सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

और 14 अगस्त बस अराउंड द कॉर्नर है और उसकी तैयारियां जो है वो क्या कहते हैं जारी और सारी है. बच्चे एक्साइटेड हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ सेलिब्रेशन. और अब तो 14 अगस्त के खास कपड़े भी आते हैं बच्चों के लिए. हमारे टाइम पे तो बस अम्मियां खुद ही व्हाइट एंड ग्रीन कपड़े बना देती थी, अब तो खास 14 अगस्त के लिए कपड़े आते हैं बने हुए और बैजेस एंड ऑल, और सब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं. खैर, और मैं बच्चों को भी बता दूं और बड़ों को भी बता दूं कि आप हमेशा अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला के शुक्र से कीजिए, अल्लाह ताला के जिक्र से कीजिए. बहुत शुक्र करना चाहिए और कि हमारा मुल्क, हमें आज़ाद मुल्क में हम पैदा हुए हैं, क्योंकि आज़ादी बड़ी चीज़ है. उसकी कदर जब ही होती है जब आज़ादी बाकी नहीं रहती, राइट. हमें बस अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम और सलामत रखे, हमेशा आज़ाद रखे, जालिमों के जुल्म से बचाए और हमारे ऊपर अच्छे लीडर्स लेकर आए, अच्छे लीडर्स जो वतन से मोहब्बत करें और दिल से लोगों की खिदमत करने की चाह रखते हो. एनीवेज, हम पढ़ रहे हैं सूरह गाशिया का तर्जुमा. आइए स्टार्ट करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत से चेहरे उस दिन चैन से होंगे, अपनी कोशिश पर राजी होंगे, बुलंद बाग में इसमें कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे. उसमें जारी चश्मे होंगे, उसमें बुलंद तख्त होंगे और रखे हुए ग्लास होंगे, और सब तर सब गांव तकिए लगे होंगे और उम्दा कालीन बचे हुए होंगे. क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है, और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों को कैसे कायम किया गया है, और जमीन कैसे बिछाई गई है. आप सुन रहे थे सूरह गाशिया का तर्जुमा. जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ें, समझ के पढ़ें, जिनको उर्दू समझ आती है वो उर्दू में पढ़ें, जिनको अरबिक समझ आती है वो अरबिक में पढ़ें, और जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. और मैं अपने प्यारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये भी बता दूं कि कुरान जो है ना, वो तकरीबन दुनिया की हर जबान में उसका तर्जुमा है. तो अगर आपको अरबिक समझ नहीं आती तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. और बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप जो हो अरबिक को ही समझो, और ताकि आपको डायरेक्टली मतलब समझ आए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवर होली बुक. और राइट, और अभी जो है वो हम जो है क्या कहते हैं, पक्के दोस्त का जो है टाइम आ गया, और हम कोशिश दुआ अल्लाह से यही मांग रहे हैं कि बादल जो ये आए हुए हैं तो वो बस बारिश हो जाए, है ना. और कितना मजा आएगा 14 अगस्त को बारिश हो जाए. और राइट, तो खैर अभी सुनते हैं पक्के दोस्त का ये ट्रैक.

0: कोई नहीं है मेरे पास।
1: अरे लाल पिग, ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बोर हो रहे हो? अपने आसपास देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। बादल देखो, तारे देखो, फूल देखो, बारिश देखो।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। अभी इजी

0: वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1,000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड कैडिलैक
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा।
10: एंड हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
11: FM 24/7/365
12: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: जी, अब सुबह सुबह काफी एनर्जेटिक मूड हो गया है. वैश्वरी, मैं इसलिए लगा रही होती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं खुद बहुत डाउन होती हूँ, तो अपने आप को खुद ही एक्साइटेड और एनर्जेटिक कराने के लिए मैं ये गाने लगाती हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आए होंगे गाने. और राइट, और हम जो है आज क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप लोग कितने ज्यादा शुक्रगुजार इंसान हैं कि नहीं, अल्लाह का आप शुक्र करते हैं कि नहीं. अब आप लोग बोलेंगे हाँ जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं. शुक्रगुजार सिर्फ अल्लाह ताला का तो हम होते हैं, लेकिन लोगों का भी लोग बहुत कम थैंक यू बोलते हैं. मैंने देखा है कि कुछ लोग इतने बड़े बड़े फेवर्स करा लेते हैं मगर फिर पलट के पूछते नहीं है, थैंक यू नहीं बोलते. ये थैंक यू ना कहना किसी का बड़ा चुभता है. और मैंने टॉपिक भी इसलिए रखा, एक किसी कोई इंसान मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे जरूरत है पैसों की एंड ऑल दैट, एंड देन पैसों की जरूरत थी उसको. और तो खैर हम लोगों ने, दोस्तों वोस्तों ने मिलके जो है उसको उसका काम करा दिया. लेकिन उसके बाद हमने जब उसका काम कराया और हमें लगा कि वो तो हमें बिल्कुल लंबे चौड़े थैंक यू के मैसेजेस करेगा, सिर्फ मुझे नहीं क्योंकि अब पर्सनल बात नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थे, तो मैं आई जस्ट वॉन्टेड कि वो एक्नॉलेज करे इसको कि कितनी मेहनत की गई है और थोड़ा थैंक यू कहे, ताकि मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूं कि यार बड़ा शुक्रगुजार हो रहा था वो इंसान. लेकिन जब उसका मैसेज नहीं आया एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड डूक, मतलब ये थैंक यू कहना कितना ज़रूरी होता है. और मुझे था कि यार अगर ये मुझे थैंक यू बोल देता तो कितनी खुशी होती मुझे और मेरे दोस्तों को भी, मैं उसका मैसेज फॉरवर्ड करती. लेकिन खैर फिर ही सेड थैंक यू बट इट टुक अ वाइल एंड आई वॉज लाइक वाकई में हम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि हम कितना कम थैंक करते हैं. और ख़ास तौर पर जो है ना वो अपने पेरेंट्स का बहुत कम थैंक यू बोलते हैं. हमें कहते हैं हमारे लिए यही नहीं किया, यही नहीं किया, हमारे नाम पे घर नहीं किया आपने, हमें बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए, बाकी तो देखें चाचा के बच्चे ने ये किया, ताया के अब्बा ताया ने ये किया अपने बच्चों के लिए, आपने हमारे लिए क्या किया. और इसलिए मैंने किसी की बात सुनी कि एक बंदा था वो कह रहा था कि अगर आपके माँ बाप ने आपको जिंदा ही रखा है कि एक इंसानी जान को, इतनी छोटी सी जान को आपने खिला पिला के उसे ख्याल करके उसे जिंदा ही रखा, ये भी माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है. और हम यकीन करें कितना भी कर लें हम माँ बाप के का हक अदा ही नहीं कर सकते. जो बेलॉस और अनकंडीशनल मोहब्बत पेरेंट्स करते हैं कोई नहीं करता. इसलिए हम उनका जितना ख्याल करें कम है, तो ज़रूर अपने पेरेंट्स को दिन रात थैंक यू बोलना चाहिए. और एक शुक्रगुजार औलाद भी अल्लाह की नेमत है, तो आप नेमत बने लोगों के लिए, जहमत ना बने. फिलहाल हमें बताएं कि आपको लगता है कि आप शुक्रगुजार इंसान हैं, आप लोगों को थैंक यू बोलते रहते हैं हर चीज के लिए थैंक यू, या पे उनको बोलते हैं वे चाय नहीं लाया लेकिन जब वो चाय ला के देता है तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज कम है लोगों को थैंक यू बोलने का. और खासतौर पर वो जो आपसे थोड़ा सा स्टेटस में कम है, उनको लगता है वो कुछ भी करें नौकर हैं यार हमारे सबऑर्डिनेट हैं, थैंक यू बोलना चाहिए, आपकी लाइफ बेटर होगी. आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा आज समिया के फेसबुक पेज पे, आज समिया इंस्टाग्राम पे, कहाँ हैं आप लोग. और उसके बाद हमें मैसेज करें और हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, थोड़ी तवील है तो आ जाइएगा वापस.
1: It's 8:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
2: at shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
10: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना।
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
13: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
14: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
15: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
16: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
0: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
17: एंड HBL फ्रीडम अकाम, जहां ख्वाब वहां HBL।
18: एंड कैडिलैक
19: लगा और भूल जा।
20: एंड
21: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
22: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
23: FM 247365.

0: जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आप एक शुक्रगुजार इंसान हैं। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। पहली बात है मैं उसका थैंक यू कर रही हूँ कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के मैसेज किया। आजकल लोग यकीन करें मैसेजेस का जवाब देने की भी आदत खत्म हो गई है, दो दो दिन बाद तो वो व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। एनजीक कह रहे हैं येस आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह रेस यू आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू मी दैट आई एम योर लिसनर। जी एनजीक मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं मेरा शो सुन रहे हैं, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच एनजीक एंड थैंक यू एवरी वन जो मतलब लिटरली आई फील सो लकी माशाल्लाह के एन अल्हम्दुलिल्लाह के रोजाना लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मतलब उसके पास टाइम है। और हमारे पास या हमीद नसीन पटेल जी, आप किधर थी, मैं नाराज हूं आपसे, आप इतने दिनों से मुझे नजर ही नहीं आ रही, क्या हो गया आपको, आप एक दिन भी नहीं होती ना, मुझे मजा नहीं आता। और इसके अलावा लाला रुख और आबिद अमीर साहब, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। या और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो हम शामिल करेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है दोस्तों। आबिद अमीर कह रहे काश के मैं आज के मौजू पर दिल खोल के कहता, जी हाँ, लेकिन छोटे छोटे लम्हों में जब कोई बीमारी तकलीफ दुख गाड़ी का खराब होना है जवाब पर या जॉब पर जरा सी कोई उलझन हो तो ना चाहते हुए भी कुछ अल्फाज है जो जबान पर जारी होते हैं। शुक्रगुजार लोग इतने मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं माशाल्लाह। हाँ, और सबसे बड़ी समझदारी जो है दुनिया और आखिरत में वो शुक्र गुजारी है, क्योंकि आप अगर जब भी कहती हूँ कुरान के तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, सूरह लुकमान में जो नसीहतें हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने की अपने बेटे को, उसमें कहा कि शुक्र करो अल्लाह ताला का, शुक्र करो अल्लाह ताला का। और सबसे यकीन करें हमारी जबान थक जाए अगर हम अभी से लेकर हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, तब भी जो है हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। यकीन करिए जो सारी दुनिया है, सारी कायनात है, मतलब उन सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई है। अगर फल दिए अल्लाह ने तो इतनी किस्मों के फल दिए कि यकीन करिए मौसम गुजर जाता है और हम सारे फल खा नहीं पाते, और हर मुल्क के अलग फल है। और मतलब सिर्फ आप हर चीज में जायके, अगर जायकों की बातें करें तो ऊपर अगर आपने देखा धनिया बाजल, जिसको हम गार्निशिंग के लिए भी एक वैरायटी है कि ए इंसान तू खुश हो जा, तू बस मुस्कुरा ले, लेकिन नहीं, हम जो नहीं है उसके बारे में बातें करते रहते हैं और शुक्रगुजारी नहीं है। यकीन करें शुक्रगुजारी भी अल्लाह ताला हर एक दिल को नहीं देता। अच्छा जी, और या हमीद कह रहे हैं कि येस आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह बिकॉज ब्लेस विद गुड फैमिली फ्रेंड्स एंड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। इफ यू वॉन्ट टू बी थैंकफुल लुक डाउन एंड यू विल फाइंड यू आर इन बेटर देन मिलियंस, इफ यू लुक अप यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। हाँ जी, हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। कि मैं इसलिए मैं सिंध गवर्नमेंट के लोगों को यूं देखती हूँ, शुक्र है मैं इतनी मीन और चलाक और मेरा दिल इतना सख्त नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि हम उनमें शामिल नहीं है। हालांकि मुझे अगर किसी ने ऑफर की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो तो मैं एमपी एमएनए बना देंगे, सेकंड ही नहीं सोचना है मैंने, फौरन मैंने अपॉर्चुनिटी ले लेनी है, लेकिन अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल मैं खुश हूं। तो और वी लाला रुख कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां से दुआ है कि हमें शुक्रगुजार लोगों में शामिल रखें, आमीन। ये बहुत ही प्यारी दुआ है लाला रुख। और गयास अहमद के यस आई एम थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। आपकी पूरी टीम को, सब सुनने वालों का सलाम, बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि आप क्या अपने आप को एक शुक्रगुजार इंसानों में शुमार करते हैं, आपके चेहरे पे वही एक मीननेस बेजारी, हाय जॉब पे क्यों जाना है, हाय बारिश क्यों नहीं हो रही, हाय पेट्रोल की कीमतें, हाय कराची, ये वो है, तो फिर कौन है आप, कहाँ से आए हैं। और कुछ लोग हैं जो इसी शहर में बड़ी मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि मुझे उनसे मिलना जरूर है मस्त लोगों से, लेकिन खैर अभी तो हम भी मस्त हैं, हमें मैसेज करें। हम मस्त लोगों को आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद, लेकिन फिक्र ना करें हम वापस आएंगे।
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Battery.

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: कैंडीलैंड नॉन स्टॉप फन करते जाओ
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And
4: सर सर नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
0: एंड
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस का पाल दानेदार
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: पाकिस्तान हमसे है हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान
7: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है
10: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा
11: टाइम से ऐसे कि मैं हूँ कब्र से चला गया मैं नहीं बचा
12: फिर उन्होंने वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज गिरफ्तारियां जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे ख्वाब जरूर देखें बेहतर रास्ता चुने हुकूमत पाकिस्तान
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
14: FM247365
15: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता
17: मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक्स से ये कम हुई।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
15: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रूपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना।
6: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
7: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
8: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
10: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
11: कैडिलैक नॉन स्टॉप फन करते जाओ।
10: एंड
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: एंड
13: सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीतता जा।
10: एंड
7: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
14: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
15: FM 247365।
16: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: समझते हैं या नहीं।
1: थ्रीसम में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रूपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: A digital bank. Easy wala bank.
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
3: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: 100 FM.
5: This song is brought to you by EcoStar.
6: सुनो

0: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को एक शुक्रगुजार इंसान समझते हैं कि नहीं. आली अंसारी का मैसेज आया कि येस आई कंसिडर माई सेल्फ अ ग्रेटफुल पर्सन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थैंक अल्लाह फॉर ब्लेसिंग मी विद अ मुस्लिम फैमिली एंड अलाउंग मी टू बी बॉर्न इन अ फ्री कंट्री पाकिस्तान. आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द लव एंड गाइडेंस दे हैव गिवन. आई एम थैंकफुल फॉर माई केयरिंग वाइफ, माई चिल्ड्रन, अ गुड जॉब एंड अ हेल्थी environment that lets me grow. I am also grateful for sincere friends who remind me of what's right, make me laugh and stand by me through ups and downs. In everyday moments, health, small joys, chances to do good, I try to say Alhamdulillah and reflect that gratitude in my actions. Kindness to family, care for the environment and patience and optimism in difficult times. Gratitude for me isn't just a feeling, it's a daily practice. और वंस अगेन आलिया अंसारी ने बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी में इतना प्यारा मैसेज किया है. और क्या कहते हैं, थैंक यू. और वो कहते हैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार होना चाहिए. शुक्रगुजारी से आपकी आपकी रिस्क में बरकत होती है, आप आगे बढ़ते हैं. और अल्लाह ताला को शुक्रगुजार लोग बहुत पसंद है, जो हर चीज में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है. तो इसलिए जो है हमें भी शुक्र करना चाहिए. गैर और हमारे पास जो है ना मुझे लोग कह रहे कि ट्रांसमिशन नहीं आई है और सिंध गवर्नमेंट की मैं बुराइयां कर रही हूं, तो इसलिए जो है ना ट्रांसमिशन नहीं करती. ऐसी बात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर हैं हम और हमारे अपने, हमारा अपना भी सिंध गवर्नमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो वही ऐसी बात नहीं है. और अदनान अहमद का भी मैसेज आ गया है, तो क्या मैं बोल, रिजवान रिजवी का भी मैसेज आया है, थैंक यू सो मच. मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं. अदनान अहमद कह रहे हैं दावा तो नहीं कर सकता कि मैं कोई बहुत शुक्रगुजार बंदा हूं, कहीं ना कहीं हम सभी नाशुक्र हैं. अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, मुसलमान पैदा किया, हमें बोलने सोचने समझने की सलाहियत दी, अच्छे हाल में रखा है, फिर भी हमारे शिकवे खत्म नहीं होते. अल्लाह कुरान में फरमाता है इंसान कम ही शुक्र करता है, शुक्रगुजार होना ही असल अमीरी है. मेरे पास सब कुछ ना भी हो तब भी सांस, सेहत और अपने लोगों के लिए मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं. शुक्र करने से नेमतें बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी खुशियों पर भी शुक्र करना, क्योंकि शुक्र ही सुकून की कुंजी है. शुक्रगुजार होना मुश्किल वक्त में भी उम्मीद रखना है, जो है इस पर नजर रखें तो दिल मुतमईन हो जाता है. तो मैं कोशिश करता हूं, दुआ करता हूं कि शुक्रगुजार इंसानों में मेरा शुमार हो. बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो क्या कहते हैं आपने किया अदनान अहमद. आई होप कि आपने सुन लिया होगा, क्योंकि थोड़ा मसला है, ट्रांसमिशन का मसला चल रहा है और आवाज हमारी नहीं जा रही है. एनीवेज तो खैर आप लोग मुझे मैसेज करिए और बताएं कि आप कितने शुक्रगुजार इंसान हैं. हमें इंतजार रहेगा आप लोगों की शुक्रगुजारी से भरपूर मैसेजेस का. अदनान अहमद और आलिया अंसारी ने बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस किए और हमें लेनी है एक और ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Valley.

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्री रमकम जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: कैडिलैक नॉनस्टॉप फन करते जाओ
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
4: सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
0: एंड
5: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
6: खवातीनो हजरात मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है घर देर से लौटना वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना गैर मामूली अखराजात में इजाफा ये सब इसकी बड़ी अलामत है खुदा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: कैडिलैंड नॉट सो फन करते जाओ
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीतता जा
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस का

0: FM 24/7/365. FM 24/7/365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है।

0: जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Back to back, only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार। FM 100 Like us on Facebook.com/FM247365
2: FM 247365

0: दादी की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM 247365 FM 100
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो जी अब आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को फॉलो करें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और अपने हाल अहवाल बताएं भाई, कैसे हैं आप लोग सब। और इसी के साथ साथ जश्न आजादी मनाने से हम सिर्फ 2 रोज दूर हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं, कहां तक तैयारियां पहुंची, हरा सफेद कपड़े खरीदने हैं या फिर सिर्फ सफेद लेना है और हरा दुपट्टा लेना है। और उसमें भी अक्सर होकर जो खवातीन है ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ कर रही होती है कि भाई ऐसा हो कि सूट ले लें तो दुपट्टा घर से निकल आए, या नहीं मेरे पास एक व्हाइट सूट रखा है देखो जरा इसी दिन के लिए। बिकॉज अक्सर औकात बहुत सारे ऑफिस में भी इवेंट्स होते हैं जिसको जेरे नजर रखते हुए आपने सफेद और हरे कपड़े पहने होते हैं। तो भाई क्या तैयारियां हैं सबकी, कहां तक पहुंची तैयारियां। और बहुत सारे बच्चों के जो हैं वो टेबलोस चल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, उसकी तैयारियां बच्चे स्कूल में तो कर ही रहे हैं लेकिन घर में भी तैयारियां चल रही होती हैं। तो क्या क्या तैयारियां हैं, कहां तक पहुंची भाई, जश्न आजादी मनाने से हम सिर्फ 2 रोज दूर हैं। और आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपसे एक अदद सवाल भी पूछते हैं और बताते हैं कि भाई इस सवाल का सही जवाब किसने दिया। तो कल हमारे प्रोग्राम की जो विनर थी वो लुक वर्ल्ड बनी थी और उन्होंने बिल्कुल सही हमारे सवाल का जवाब दिया था। और आज भी हमारे पास एक अदद सवाल मौजूद होगा जिसका जवाब आप लोगों से हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 बजे यानी कि अभी प्रोग्राम के हम सेकंड हाफ में जब दाखिल होंगे तो फिर आपसे सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि भाई आज किसका जवाब सही होता है और आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का विनर कौन बनता है। तो जी इसके लिए करना आपको होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कदर ब्रेक की जाने और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे सवाल पूछेंगे, आपके मैसेज को शामिल करेंगे और बहुत सारे मिली नगमों को करेंगे प्रोग्राम में शामिल। लेकिन उससे पहले एक अदद ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक।
1: FM 100 टाइम चेक, इट्स 1 PM।
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
4: Azan-e-Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान-ए-ज़ुहर का वक्त हुआ चाहता है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।

ऑल राइट जी, सो वेलकम बैक. हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. हम आ चुके हैं वापस और भाई बात हो रही है कि जश्न आजादी आप लोग किस तरीके कार के जरिए मना रहे हैं, किस तरह सजावटें चल रही हैं, हरे सफेद कपड़ों की खरीदारी हो रही है, अपनी गलियों को सजा रहे हैं, अपनी गलियों के साथ साथ अपने घरों को भी सजा रहे होते हैं. हम अपनी गैलरी को कहीं झंडे लगाने हैं तो कहीं झंडियां लगानी हैं और बड़ी खूबसूरती से हर कोई जो है वो इस वक्त ये मेहनत मुशक्कत करता हुआ नजर आता है. फातिमा फर्टिलाइजर की जानिब से अरे सुनो, इस 14 अगस्त सिर्फ झंडे लगाना ही नहीं पाकिस्तान को दिल से भी दिखाना है. फातिमा फर्टिलाइजर लाया दिल से देखो सरसब्ज पाकिस्तान कैंपेन. बस अपने शहर की खूबसूरती, अपनी गली, अपने लोग या कोई भी ऐसा लम्हा जो पाकिस्तान की पहचान बने उसकी वीडियो बनाएं. टिकटॉक पर ऑफिशियल सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज ऑडियो यूज कीजिए और हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ अपलोड कर दीजिए. हर हफ्ते एक्साइटिंग गिफ्ट जीतें और ग्रैंड फिनाले में आईफोन 17 वाव स्कर्दू का टूर, ईवी बाइक्स होंडा सीडी 70 और ईवी स्कूटी जीतने का मौका पाएं. तो फिर देर किस बात की, दिल से देखो सरसब्ज पाकिस्तान.

0: दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। ऑल राइट, इस प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवाइट भी हो गई काम, यानी कि एक ट्रैक, यानी कि एक मिली नगमा हमने आपको डेडिकेट कर दिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आस्क एवरी डे टू यू कि भाई आपके लंच में क्या है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अब हमने जो है वो कल से ये भी शुरू किया है कि हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का विनर कौन बनता है। तो भाई कल तो लुकवर्ल्ड बनी थी, आज देखते हैं कि आज कौन बनता है। तो भाई आज का सवाल भी हमारा बड़ा आसान है, आसान से सवाल है जो कि हम आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा है, किसने लिखा था। तो मतलब दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब आई होप सो कि सभी को पता होगा। वैसे हिंट्स भी मौजूद है, पहले मैंने सोचा कि हिंट्स दूं, फिर मैंने कहा नहीं हिंट्स की बात नहीं है, इतना आसान सा सवाल है कि भाई पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा था। तो क्या आप इसका जवाब जानते हैं? अगर जानते हैं तो भाई देर ना करें, जल्दी से अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस, लेट्स सी हु इज द विनर, आज कौन जीतता है। तो हम इंतजार करेंगे आपके मैसेजेस का और उसी के साथ साथ हम चलेंगे एक और मेरी नगमे की जानिब। और ये मेरी नगमा कल हमारे लिसनर्स को बड़ा पसंद भी आया था, मुझे तो खैर ये पसंद है ही, लेकिन क्योंकि हमारे लिसनर्स को भी पसंद आया था तो बिल्कुल हम इसे शामिल करेंगे और साथ ही साथ आपके मैसेजेस का भी इंतजार करेंगे। तो आप जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि किसने लिखा था पाकिस्तान का नेशनल एंथम। जब तक आप हमें बता रहे हैं हम शामिल करते हैं इस नेशनल सॉन्ग को और फिर आते हैं वापस।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, तमाम मिलत हिम्मत और नमक के साथ काम करती रही, हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए।

ऑल राइट डी, सो वी आर बैक। और भाई बहुत जबरदस्त किस्म के मिली नगमे भी इस वक्त हमारे प्रोग्राम में चल रहे हैं, क्योंकि जश्न आजादी से सिर्फ हम दो रोज दूर हैं और आपको अच्छे अच्छे मिली नगमे भी सुना रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने आपसे सवाल भी पूछा है जिसके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा था। तो आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, के ट्राई लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो जल्दी जल्दी मैसेज करें और सही जवाब देना वाला जो है वो आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का विनर बनेगा। तो लेट्स सी कि भाई कौन बनता है विनर। हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार। कुछ मैसेजेस आ चुके हैं लेकिन मैं सोच रही हूं कि क्यों ना इन सारे मैसेजेस को एक साथ ही शामिल किया जाए। सो ऑल राइट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। जब तक हम चलते हैं एक और नेशनल सॉन्ग की जानिब।

पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल राइट जी, सो आप लोग इसे भी इंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। मैं अपने लिसनर्स के नाम ले लेती हूँ, लोग कहेंगे हमने आपको कब से जवाब दिया हुआ है, आप हमारे जो सवाल का जवाब है उसको शामिल नहीं कर रहे। तो हमने पूछा था कि भाई पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा था, और हमारे पास वो जो एक कंपल्सरी है गुमनाम मैसेजेस वो तो आते ही आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें आयशा ने मैसेज किया है, हमें लुकवर्ल्ड ने मैसेज किया है, हमें उसी के साथ साथ जो है अनस ने मैसेज किया है, हमें अली ने भी मैसेज किया है। और अच्छा, मैं सबके नाम भी लोग करूंगी, आप इकट्ठे नाम ले रही हैं, तो आज सबका इकट्ठे नाम लेने के पीछे वजह यह है कि आज मेरे सवाल का सबने सही जवाब दिया है। तो आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का कोई एक विनर नहीं है, बल्कि आज हमारे पास बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और सबने सही जवाब दिया। जी हाँ, तो हफीज जालंधरी ने लिखा था हमारा नेशनल एंथम, सो यस यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। तो आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का कोई एक विनर नहीं है, बल्कि कई विनर्स बन चुके हैं, बिकॉज एवरीबडी नो दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ऑब्वियसली ये कैसे सवाल है जिसे हम जानते भी हैं, इसका जवाब क्या है। हफीज जालंधरी ने लिखा था हमारा नेशनल एंथम, और कल भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, कल जरा मुश्किल पूछेंगे, आज तो दो दिन से मैं आसान सवाल पूछ रही हूं, तो कल जरा सा डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे और फिर आपके मजीद मैसेजेस को शामिल करेंगे। और क्योंकि जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो एक और भी नगमा भी शामिल कर लेते हैं हम लोग। मैं कह रही हूं इस कम वक्त में शामिल कर लें तो जरा मजा ही आ जाएगा, तो इसे शामिल करते हैं और फिर आते हैं वापस।

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned in to FM 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, and aap sun rahe hain hamara show, jiska naam hai Genie in a Radio. So today is 12th of August 2026. आप सुन रहे हैं हमारा शो एंड आप लोग हमें मैसेजेस बिल्कुल कह रहे हैं 3636 पर आप लोगों को बताते चले कि ये रिक्वेस्ट शो है. यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. इसके लिए तरीकेकार जो है वो बहुत ही आसान है. टाइप के एच आई देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट और उसे 3636 पर भेजना है. You can also request for your favorite tracks on our page, which is facebook.com/rj.jasmine. Wahan pe bhi you can request for your favorite tracks. Okay, so right now we are moving on towards the first track of the show. This is going to be the song called Hame Pyar Hai Pakistan Se. Milte hain is gaane ke baad.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

Alright, now welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग बिल्कुल हमें पेज पे facebook.com/orchid.jasmine पे मैसेज कर सकते हैं एंड बता सकते हैं आप कौन सा गाना जो है वो सुनना चाहते हैं. ये चाहे तो 3636 पर भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल नेशनल सॉन्ग एंड द ट्रैक इज सोनी धरती बाय खुरम जमशेद, मोहम्मद अली एंड एमन. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 and facebook.com/orchid.jasmine.

ओके सो आप लोग ये भी बता सकते हैं आप लोग 14 अगस्त की तैयारी यानी कि जश्न आजादी की तैयारी कैसी जा रही है. लेट अस नो ऑन 3636. आर यू गाइस डेकोरेटिंग समथिंग? आप लोग अपना घर या अपनी ऑफिस प्लेस जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं कर रहे हैं या भी करेंगे या कर चुके हैं? लेट अस नो. यू कैन ऑल्सो शेयर द इमेजेस ऑन माई पेज, वहां पे आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं. जस्ट वॉन्ट टू सी के किसने किस तरीके से सजाया है. ऑल्सो टूडे इज 12 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की कहानी के हवाले से. यानी कि आज हम जो हैं वो कुछ मजेदार चीजें जो हैं आप लोगों से डिस्क्लोज करेंगे, आप लोगों को बताएंगे पाकिस्तान की कहानी. सो हर शहर की अपनी खासियत है, हर शहर की अपनी स्पेशलिटी है. किस शहर की क्या खासियत है, कब से है और क्या स्पेशल है वो आज हम अपने शो पे डिस्कस करेंगे. सो द सेगमेंट इज पाकिस्तान की कहानी. और अगर आप चाहते हैं तो आप भी हमें, अगर किसी आप कराची से हैं, अगर आप लाहौर से हैं, अगर आप इस्लामाबाद से हैं, अगर आप हैदराबाद से हैं, आप जहां से भी हैं, तो आप लोग मुझे पेज पर मैसेज करें और वहां उस शहर की, उस जगह की खासियत बतानी है आपने मुझे. सही है. सो टुडेज टॉपिक एंड दिस टुडेज सेगमेंट वुड बी सो इंटरेस्टिंग. आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करना है और जहां भी आप रहते हैं. सही है. आप अगर कराची इज अ बिगेस्ट सिटी, ठीक है, तो वहां पे आप अगर किसी एरिया में रहते हैं तो वहां की खासियत बता सकते हैं, वहां की कोई स्पेशलिटी बता सकते हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई हम इस शहर में रहते हैं या हम इस एरिया में रहते हैं, यहां की ये खासियत है. So you just have to message me on my page which is facebook.com/rj.jasmine. यहां पे आप लोग हमें बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ शॉर्ट लिटल ब्रेक. आप लोगों को बता रही है आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कहानी के हवाले से, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों की खासियत के हवाले से, उनकी स्पेशलिटी के हवाले से. क्या चीज स्पेशल है जो आप लोग भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. सो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा और facebook.com/rj.jasmine पर मैसेज करते रहिएगा.

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान facebook.com/rjdrjasminebay. आप हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं. सो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कहानी के हवाले से, विच मीन्स दैट टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ एवरी सिटी, यानी हर शहर की खासियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं. आप लोग जिस शहर से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, आपने हमें मैसेज करके बताना है. पेज पर मुझे मैसेज कीजिएगा facebook.com/rj.jasmine पे, और आपने बताना है आपके शहर की वो ऐसी कौन सी खास चीज है जो बहुत ज्यादा मशहूर है कि उसको मतलब पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं कि भाई लोग उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट इन और बताना है कि भाई क्या ऐसी खास चीज है आपके शहर के हवाले से. लेट अस नो ऑन आवर पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine पे. ओके, हमें पेज पे मैसेज किया है, कमेंट किया है शेख साहब ने. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज शेख साहब. एंड हाँ, लास्ट वीक नहीं आई थी मैं, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. यस, एवरीथिंग इज ओके. नेशनल सॉन्ग्स हम चला रहे हैं बिल्कुल शो पे, एक अच्छा सा सॉन्ग चलाएंगे और आपके लिए प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ओके, सो अगर हम कराची के हवाले से बात करें, कराची में क्या ऐसा लगता है कि जो यू नो कराची की स्पेशलिटी है. वैसे अगर हम कराची की स्पेशलिटीज के हवाले से बात करें, यार काफी सारी हैं. यू नो वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ एनी वन थिंग. ये कराची वाले हमें मैसेज करके भी बताएंगे कि उन्हें क्या स्पेशल लगता है कराची के हवाले से. वेल, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई थिंक द स्पेशल थिंग इज अबाउट कराची, एक तो द फूड स्ट्रीट. ओके, जबरदस्त फूड स्ट्रीट है हमारे शहर में माशाल्लाह, और एक समंदर की खासियत है. एंड ऑब्वियसली द मोस्ट प्रेशियस थिंग for all the foodies out there, Karachi ki biryani. Oh ho ho ho ho, everyone is you know totally insane about Karachi ki biryani. I mean sab Karachi ki biryani ko jo hai bahut acche se mante hain, and they know ki jo Karachi wale biryani mein masala dalte hain aur jis style se Karachi ki biryani banti hai, यू नो उसका एक टेस्ट अलग होता है जिससे कोई भी शहर जो है वो अभी तक कम्पीट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से. यू नो हाँ ठीक है, बना रहे हैं नो डाउट, लॉरीज भी बना रहे हैं, इस्लामाबाद वाले भी बना रहे हैं, लेकिन आई गेस जो कराची वाला टेस्ट है वो तो फिर आपको पता ना कि कराची में ही मिलेगा. लिज़न, मैं अभी यहाँ कोई भी किसी किस्म की लड़ाई के मूड में नहीं हूँ कि यहाँ अभी शहर वाले मुझे मैसेज करना, अलग अलग शहर के लोग मैसेज करना शुरू कर दें इस्लामाबाद वाले. लेकिन इस्लामाबाद वाले हो, लाहौर वाले हो, हैदराबाद वाले हो, जिस शहर से भी हो, यार हम ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और मेन तो पाकिस्तान है ना यार. तो हम सिर्फ हम कोई फड्डा नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ खासियत के हवाले से बात कर रहे हैं, स्पेशलिटीज के हवाले से बात कर रहे हैं. मैंने आप लोगों को बताया कि कराची की फूड स्ट्रीट है, बिरयानी है, एंड ऑब्वियसली हमारे पास समंदर है. एंड यस, हमारे पास समंदर है. सो बिल्कुल लोग आते हैं यहाँ पे सैर व तफरी के लिए, आते हैं ऑन सी साइड एज वेल. एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द फूड ऑफ कराची, तो माशाल्लाह इट हैज अ लॉट ऑफ टेस्ट, बहुत सारी वेराइटीज हैं, हर तरह का टेस्ट है आप लोगों को मिलेगा, और लोग वाकई तारीफ भी करते हैं. और बिरयानी जो है एक ऐसी चीज हो गई है जो एक खासियत है. ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप लोगों ने भी मुझे मैसेज करना है पेज पे और मुझे बताना है कि भाई आप लोगों के शहर की क्या ऐसी खास चीज है जिसके लिए आप लोग जो है बहुत प्राउड फील करते हैं और उससे बहुत जबरदस्त तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये है हमारे शहर में ऐसी चीज, ये ऐसी चीज अगर तुम्हारे शहर में, या ढूंढ के लाओ या बताओ. ठीक है, सो लेट अस नो ऑन आवर पेज विच इज facebook.com/rj.jasmine. ठीक है, आप लोग के कॉमेंट्स हम शामिल करेंगे. एंड देन अभी हम जाएंगे एक ट्रैक की तरफ. दिस इज गोइंग टू बी the song called Adil, the song Adil, and it's by Ali Zafar and Sara. So milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahiyega aur comments karte rahiyega.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे FM 100 पाकिस्तान एंड पेज पे हमारे पास काफी सारे जो हैं वो कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं. ओके, हमें निदा ने मैसेज किया है पेज पे. वालेकुम अस्सलाम निदा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं. एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ नेशनल सॉन्ग विच इज दिल से बाय हारून. चलें ठीक है, डन हो गया. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, डेफिनेटली हम आपके लिए प्ले कर देंगे. हाँ, कह रही हैं बड़े दिनों बाद आपका शो सुना है, कहाँ थी आप यार. मैं बस लास्ट वीक नहीं आई थी और मुझे भी वाकई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कितने टाइम से नहीं आई हूँ, मैंने शो नहीं किया है, मिस किया मैंने आप लोगों को. वैसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल्सो मिसिंग मी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अच्छा, अब हम बात करेंगे अबाउट इस्लामाबाद. इस्लामाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो भाई, एक तो इस्लामाबाद जो है वो इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह इतना हसीन है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती जो है वो पूरे पाकिस्तान में, इवन नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइडली अगर हम बात करें तो भाई इस्लामाबाद की खूबसूरती के लोग जो हैं वो ऐसे फैंस हैं, इतने दीवाने हैं कि उन्हें पता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने इस्लामाबाद को जो है, पाकिस्तान को भी वैसे बहुत खूबसूरती दी है, और स्पेशली इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहां की जो हरियाली है, वहां का जो सुकून है और वहां का जो एक पीसफुल एटमोसफेयर है, एक नजारा है, तो वो तो भाई अलग ही एक सीन बनाता है. सही है.

0: इजी वाला बैंक।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

Alrighty everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. And आप लोग बिल्कुल हमें messages कर रहे हैं page पे, which is facebook.com/archer.jasmine. And you can also text in on Instagram by the name of Jasmine underscore Emma, JZMINE underscore AHMED. And yes. So जनाब हमारे पास messages की page पे जो आ रहे हैं वो request आ रही हैं songs की. And हमारे पास मैसेज आया है शुमाइला का एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग बोल हूं. चलें ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. अच्छा हमारे पास मैसेज आया था निदा का और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आजादी ओएसटी फ्रॉम जुनून. सो इफ यू आर लिसनिंग योर सॉन्ग इज नाउ प्लेइंग. आते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: Alrighty, everyone. Welcome back. Absolute FM 100 Pakistan. And the show is called Genie in Our Radio. My name is Jasmine. So it's an hour to 15 minutes past 3 on the dial right now. Right now, we are moving on towards another track. And yes, this is going to be the song called... हमारे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं काफी सारे और मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मैंने नाम शामिल कर लेती हूँ. ओके राहिला, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, रियली अप्रिशिएटेड. सदाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एज वेल. Okay, so meanwhile, we are moving on towards this track. The track is Sabka Shajra Pakistan. Milte hain is khoobsurat se gaane ke baad.
1: Assalamu alaikum. Bhaiyo, aur bano. Pakistan haasil karne ke liye humne bahut qurbani ki hai. Tamam millat himmat aur sabr ke saath काम कटी रही हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।
4: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: ईजी वाला बैंक।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
8: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।

0: खुशखबरी, सिंध की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपना कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मौका। यूनिटो पैदार और सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड की SEDF ग्रांट स्कीम के तहत एलिजिबल SMEs को 3.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट सपोर्ट दी जा रही है। अगर आप फिशरीज और एक्वाकल्चर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, वेस्ट रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, वुमेन लेड बिजनेसेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। ये स्कीम लारकाना, ठट्टा, बदीन, थरपाकर और सजावल में काम करने वाले या इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कारोबार शुरू करने वाले ख्वाहिशमंद SMEs के लिए है। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है। देर ना करें, अपना इनोवेटिव और वायबल बिजनेस आइडिया आज ही तैयार करें और SEDF ग्रांट पोर्टल पर अपना बिजनेस प्लान सबमिट करें।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL एंड
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा
1: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा एंड
4: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान,
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: This is your music.

0: Viva la Bank!
1: Easy Paisa लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy Paisa QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. Easy Paisa डिजिटल बैंक, Easy वाला बैंक.
2: This program is brought to you by
3: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
2: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL. And
4: Candyland, non-stop fun करते जाओ.
2: And
5: फिनिक्स लगा और भूल जा.
2: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीतता जा. एंड
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार.
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے.
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka at shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
4: Sir, sir, Nitrofos ki bori pe laga 9 hinson ka sticker code apne naam aur ilake ke saath 0300-0300-641 par bheje ya Sir, sir, Pakistan app ke zariye apni entry register karwaye aur mauka paaye umra ticket, motorcycle aur mobile phone jaise dheron inaamat jeetne ka. Entry bhejne ke baad bori aur sticker sambhal ke rakhe. Mazeed malumat ke liye Sir, sir, helpline par call kare to Sir, sir, Nitrofos ko laga aur jeet taja.
5: Brand new Suzuki Alto जीतना चाहते हैं? बस अपने Easy Paisa account में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 Suzuki Alto या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का? अभी डिपॉजिट करें और जीतें। Easy Paisa Digital Bank, Easy वाला बैंक।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब?
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Aap samajh aaya, ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank, Easy Wala Bank.

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया। शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली। ज़रई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया। रेड बस पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है। तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग दे रहे हैं। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद और शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178377।

0: Travel Bank, Easy Wala Bank.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंसीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाए। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: house of 6B Food Industries.
1: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
3: कैडिलैक फन करते जाओ।
1: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: एंड
5: सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीतता जा।
1: एंड
6: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
7: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
1: FM 100's time check. It's 6 p.m.

0: Bank, easy wala bank.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से शौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, ₹79 तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: Circle Bank, easy wala bank. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

लंच टाइम अपनी कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: 89 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: The Bank. Easy Wala Bank.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane, bas topal dane dhar. Lunch time. Apni colleagues ke saath bill split karna. Ye hai. Asal Azadi. Aapke liye Asal Azadi kya hai? Download the JazzCash app now.
2: Hey yo, single again? Ujad gaya raaton ka chain. You deserve better ke chhod gayi again. No compatibility ya lage plus. Kisse wali aunty ko paiso se karz hai. Shaadi kab kar rahe hai kya poochna farz hai? तक चलेगी ये चाय पार्टी घर पे देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे क्लास का मसला कभी क्लास का मसला कभी पप्पो या खाला या सास का मसला मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी अगर आपको मसला तो रखिए फासला रिश्ता पसंद आया नहीं

0: This program is brought to you by
1: इस जश्ने आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: एंड
3: सरसब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
4: एंड हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
5: FM247365

0: वाला बैंक। सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका।
10: At shopping of 5,000 rupees only.
9: And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!

अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
2: 79 सालों से पीटीसीएल है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना पीटीसीएल की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank. Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए. तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठा ले, ये अहद भी करें. हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे क्योंकि जो तीन असूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब?
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.

0: Bank, Easy Wala Bank.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
7: Assalamu alaikum Pakistan.
8: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azan e Maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।

0: दुकान चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।

0: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: 80 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
2: Hey yo, single again? उजड़ गया रातों का चैन, ये दूसरे

0: वाला बैंक। शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: रात में दोस्त

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: little dank, easy wala dank.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar, chai bane bas ka pal dane dar.
2: HBO Freedom Account ke saath muft IDFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जैक कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैक कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैक कैश है ना.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
3: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
5: at shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
5: भागो!
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
9: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: द हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।

0: पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: 79 सालों से पीटी सेल है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना पीटी सेल की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: 100 FM.
2: This song is brought to you by EcoStar.
3: सुनो

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas kapal danedar.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार. चाय बने बस कपाल दानेदार.
4: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं. तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें. हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 24/7 365। ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: from the house of 6B Food Industries.
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना?
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
4: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: हाउस ऑफ 6B फूड इंडस्ट्रीज।
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM247365

0: from the house of 6B Food Industries.
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
4: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: PTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए पहले। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
4: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
5: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
6: हमारी जिम्मेदारी है।
7: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: facebook.com/fm247365 Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: This is your music.
11: Yo, yo, mucha gasolina en el verano, loco.

जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस आप लोग करते हैं KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। और जनाब हमें सुन रहे हैं हारून भाई भी, मानी भाई भी, और बड़े प्यार से सुनते हैं। और अगर आप कुछ जरा अच्छी ड्रेसिंग करना चाह रहे हैं और खैमान बुखारी में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, तो आप जा सकते हैं रॉब्स एंड रॉब पर और वहां जाकर अपने पसंद के आप जो है ड्रेसेस ले सकते हैं। और क्या शूजेज हैं, वाह वाह क्या कहने, जबरदस्त चीजें। और आजकल तो जरा अप टू 50% डिस्काउंट भी है भैया। ये सारी बातें होंगी। अच्छा जनाब, और इसके अलावा पंजाबी गानों की आज जरा जबरदस्त क्यू शीट मैंने रखी हुई है। अच्छा जनाब संजीदा आ गई। संजीदा जी क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं, कैसे मना रही हैं 14 अगस्त? और जनाब यकीनन एहतमाम तो किया जा रहा होता है, लेकिन वो मैं कोशिश कर रहा हूं खुद जो है

लेकिन वो मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद जो है दो एक दिन रह गए तो भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट करें, कोशिश करें जरा अच्छे अंदाज में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं लिख दी हैं संजीदा ने, बड़ी मेहरबानी, वेलकम भी बड़े स्टाइलिश अंदाज में इन्होंने कर दिया है। और ये भी यही कह रही है इस बार यौम आजादी पर इतना गहमी गहमी नहीं है, गहमा गहमी। अच्छा, हमारी तरफ बहुत स्टॉल लगते थे मगर अब नहीं। हाँ, स्टॉल के भी तो अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं ना लोग, उन्होंने कहा मिट्टी टाओ तो स्टॉल के भी आजकल खर्चा टिका के हो रहा है। शहजाद दे, आपके आने का शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है भाई, एफएम 100 भाई मेरा भी दिल यहीं लगा रहता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एफएम 100 जरूर जरूर आता हूँ और कोशिश करता हूँ छुट्टियां जरा कम से कम, इस दफा कोशिश करेंगे जरा छुट्टियां जो है वो जरा कम से कम। सलाम, कैसे हैं सबको, सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, जरी नूर, वालेकुम अस्सलाम। और गयासुद्दीन बलबन आ गए मुल्तान से, गयास क्या हाल है मेरे भाई, ठीक हो, खैरियत से हो, पूरी टीम को सलाम दे दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और वो है कैसे।

अब्दुल्ला भी सुन रहे हैं भैया में, और हारून भाई तो सुन ही रहे हैं। हारून भाई वैसे किसी की नहीं सुनते लेकिन आज सुन रहे हैं। और मानी भाई आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अयाज भाई कह रहे हैं कि कुंवारों को आजादी मुबारक और शादीशुदा को जश्न आजादी मुबारक 14 अगस्त की। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी गहरी बात है वैसे। और जनाब जावेद के भी मैसेज आ गए हैं अयाज भाई आपको और तमाम लिसनर्स को, अस्सलाम वालेकुम। उस दिन बिलावल का मैसेज रीड नहीं किया, शिकायत करने पर आपने बिलावल की इंसल्ट तो नहीं कर दी यार? दोस्त है भैया, उसको हमने वैसे ही बोल दिया, वैसे सारे दोस्त हैं यार, और तुमने फील कर ली इंसल्ट। मुझे लगता है बिलावल भाई इतने कोई छोटे जहन के आदमी नहीं लग रहे, ठीक है ना? और बिलावल भाई आपसे नाराज हो गए हैं? नाराज हो गए? अच्छा, क्वेश्चन मार्क। पता नहीं यार, इंसान कामों में भी मसरूफ रहता है यार, ऐसे क्यों ऐसे नहीं सोचते यार, पॉजिटिव रहा करो हमेशा। अच्छा जी, आयशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक आयशा जी, आप बताइए कैसे? सब सुनने वालों को भी सलाम दे दिया है और आपको भी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जनाब, और इरफान कह रहे हैं कि अयाज भाई प्लीज फेसबुक पर लाइव भी आया करें। अरे भैया क्या करोगे, खातून वातून तैयार व्यार होकर आती हूँ, अच्छी भी लगती है स्क्रीन पे आते हुए। एक बंदा ऐसे ही शेव भी किए बगैर आया, वो कैसे लगे आप, समझा करो ना यार। मैं तो वैसे भी रफ एंड टफ आदमी हूँ, तो बस इसमें जरा फोकस इस पे रहता है, बातचीत करने में और मैसेजेस पढ़ने में, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन खैर उसमें भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पे भी अपने एक दोस्त होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे लिसनर्स जो है वो आ जाते हैं और व्यूअर्स भी आ जाते हैं, देख भी रहे होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में ठीक हो गया। इरफान भाई वैसे जब भी आते हैं बस उनकी ये शिकायत होती है भाई लाइव क्यों नहीं आ रहे, भाई मैं आ जाऊंगा यार, की करा मैं। अच्छा जनाब, 8 मिनट की ब्रेक लग रही है मुझे, 8 मिनट की ब्रेक आ गई दोस्तों। सुनते रहे FM 100 अयाज अहमद के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना.
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ.
4: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: BTCL के साथ हर बदलता जमाना करें अपने नाम, क्योंकि आज भी हम हैं पाकिस्तान जितने जवान।
1: 100 FM.
2: This song is brought to you by EcoStar.
3: सुनो

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। ऑलराइट जी, महा यूसुफ जई कैसी हैं? वालेकुम सलाम, और क्या हाल है आपके? मेरे हाल बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मिजाज मेरे भी ठीक है, आपके भी उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अच्छा जनाब, कहने बिजी थे और आज हाजिर हो गया। चले जनाब, बहुत अच्छा हो गया। हंस लेकिन क्यों रही, इस बात में हंसने की क्या बात? लेकिन भाई महा यूसुफ जई हैं, हंस भी सकती है, कुछ भी कर सकती है भाई। अच्छा जनाब सलाम, अदीला, अदीला बहन आ गई भाई। अयाज भाई, आपका शो बहुत अच्छा होता है, हमेशा सुनती हूँ, मगर अब याद नहीं करता आपकी बहन अदीला। अच्छा, आप याद नहीं करते अपनी बहन अदीला को? अदीला बहन, आपका नाम आया, मैंने फौरन याद कर लिया। इसी बात पर ये वाला ट्रैक आपको डेडिकेट कर देते हैं भाई। जनाब मैसेजेस KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ जना मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी और सलाम अयाज भाई साहब ज्यादा कभी मैसेज आ गया। साहब ज्यादा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और कादिर बख्श बलोच के भी मैसेज। कादिर भाई कैसे हैं आप? अयाज भाई आपको और तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भाई की तबीयत नास। अरे यार बिलावल भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आमीन बोले सारे मिलके, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी ठीक इंशाल्लाह कादिर भाई, दुआएं हम सबकी उनके साथ हैं। अच्छा भाई संजीदा जो है मिशी को मिस कर रही है, मिशी जी को मैं मैसेज पहुंचा देता हूं कि भाई मिशी आप फौरन फटाफट आ जाएं, लोग आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा भाई गाना बड़ा इनको पसंद आ गया और बड़ी अच्छी बात दिखी, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह वो दिल है जिसका दरवाजा बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। ओए होए भाई क्या बात है, जबरदस्त बात की आपने। अच्छा जनाब मिसेज फारूक भी आ गई। मिसेज फारूक क्या हाल है आपकी, तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। इतनी दुआएं और इतने अच्छे तरीके से आपने भी वेलकम कर दिया है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई कैसे हैं आप? खुर्रम हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, और जब मौका मिलता है जब वो कराची तशरीफ लाते हैं तो हम उनको अपने शो में मधु कर लेते हैं। अच्छा जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, लेकिन नहीं उससे पहले एक टाइम चेक है और 6 मिनट की ब्रेक फिर मुझे नजर आ रही है। आज जरा ब्रेक ज्यादा है इसके लिए मैं माजरत, लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी है दोस्तों।
3: इट्स 9:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए.
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
7: FM 24/7 365 7365.
8: Active. Yummy.
9: Adorable.
8: Zabardast.
9: I've got a crush on you.
8: Dekhiye pyaar to suno yaar.

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud. All right, Janab, welcome back. Sunday FM 100. Oh, Janab, sun rahi hame Islamabad se Maa Jabeen. Maa Jabeen, kaisi aap theek hain, khairiyat se? इस्लामाबाद मैंने अपनी तरफ से लगा लिया. इस्लामाबाद हो सकता है, कराची भी आई हुई, ये भी हो सकता है. तो महाजबीन जहां कहीं भी है आप हमें इतला दीजिएगा. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जनाब, इसके अलावा दानिश खान ने हमें मैसेज कर दिया. दानिश भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं. और एडवांस में जश्न आजादी मुबारक आपको भी सरकार. बहुत बहुत आजादी मुबारक. आजादी पता नहीं किस तरह की है, इसमें थोड़ा सा डाउट है. अभी जरा खुल के आजादी, कुछ तो बिल्कुल ही आजाद है, उनको फिक्र ही नहीं है. और कुछ जो है वो परेशान है, केवल समझ नहीं आ रही आजादी है भी कि नहीं है. पहले तो हर घर में सब परचम, हर घर में सब परचम लगाया जाता था. लग रहा है अभी भी लग रहा है, ऐसी बात भी नहीं है, मैं नजर ही नहीं. तुम तो बिल्कुल ही डिप्रेस हो गई. ऐसा भी नहीं है, माहौल है. आप जरा जाएंगे परचम नजर आ रहे हो और स्टॉल भी नजर आ रहे हैं, तो तसल्ली रखें. हाँ, पहले की तरह नहीं है जरा एकदम जो हो जाता था. और मेरे ख्याल से अब एक दिन रह गया, तो अगर आज आप निकलें या कल रात को भी निकलें तो मुझे लगता है ऐसा है कि रौनक होगी फुल टाइम. कहीं और रौनक होना हो, हमारे शो में तो है. लो जी, चेक करो फिर.

जबरदस्त ट्रैक फुल टाइम। अच्छा जनाब, संजीदा कह रही है आजादी महसूस तो हो रही है, शुक्र भी अदा करते हैं, कुछ भी हो आजाद मुल्क पाकिस्तान। ये बात अच्छी की संजीदा। और फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई है। फरीदा जी कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। और वो कह रही भाई 14 अगस्त में टाइमिंग क्या होगी? भाई सेम टाइम, हम इसी टाइम आएंगे 9 to 11, ठीक है ना? हाय हाय हाय, थोड़ा सा ये ट्रैक। मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का, बहुत शुक्रिया भाई। लगे जरा जश्न हो रहा है।

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार
2: facebook.com/fm247365
3: FM 100 FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
5: Yummy.
6: Dollar
5: Zabat.
6: Say that guy crush on you.
5: Sunoyad.

हाय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100। और संजीता जी बहुत शुक्रिया ट्रैक्स पसंद करने का। और बुरहानुद्दीन, फरीदा बुरहानुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, सॉन्ग्स आपको भी पसंद आ रहे हैं। अच्छा जनाब, मैसेजेस पहुंच रहे हैं और उमेर भाई ने हमें मैसेज कर दिया है। ये हैं वो साइंसदान जिन्होंने बिजली के बिलों में 199 और जब 200 होता तो डबल का फार्मूला जात किया। अच्छा जी, राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल, अरे सरकार लंगड़ियाल, आपने तो हमें पूरे सबको ही लंगड़ा कर दिया। सरकार लंगड़ियाल साहब कुछ ख्याल करें। अच्छा, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि बंदा जो है ना पल भर में पता चल जाता है कि ये वो आदमी है। चले जाना, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल है? अभी ज्वाइन किया, बड़ी मेहरबानी सरकार। अच्छा भाई, 14 अगस्त है, अगस्त का महीना है और एक दिन बाकी रह गया है 14 अगस्त मनाने में। एक और नेशनल सॉन्ग, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, चेक करें आप।

हाय जनाब, वेलकम बैक। क्या ट्रैक है यार, सीरियसली जब भी मैं सुनता हूँ ना, बहुत ही आला शायद। संजीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे जबरदस्त गाने, ऐसे मिली नगमे सुनकर दिल पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। बेशक बेशक, पाकिस्तान जैसा मुल्क वाकई में कहीं भी नहीं। बस यहाँ पे बसने वाले थोड़ा सा इस मुल्क का भी ख्याल रखें, यहाँ की अवाम का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है अवाम के लिए ये नहीं सोच रहा, जिनके हाथ में ये मुल्क आ गया है 78 बल्कि 80 साल, पता नहीं कितने साल अभी होने वाले हैं, नहीं कामयाबी हो रही जिस तरह होनी चाहिए। और क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए गिला शिकवा भी कर देते हैं। जैसे असगर साहब, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से वो करते हैं, और बता रहे थे फिल्में उन्होंने कोई ना कोई मकसद के तहत बनाई है, बिना मकसद कोई फिल्म नहीं बनाई उन्होंने। तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात जो है असगर साहब अपनी फिल्मों में बताते थे। असगर भाई, मैं कह रहा हूं अब वक्त है, अब दोबारा जरा कोई ऐसी अच्छी सी फिल्म बनाए, हिम्मत पकड़े। माशाल्लाह इतना काम भी आपने किया हुआ। अच्छा जनाब, इस गाने का शुक्रिया आपने अदा कर दिया। गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं जो प्लेलिस्ट है वो जबरदस्त है। चले जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। और महा यूसुफ भाई क्या कह रही है, गुड सॉन्ग। तारीफ तो आपकी भी बनती है, पर आपको हमारी तारीफ पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल पसंद है मुझे, तारीफ करो बस। तुम तारीफ किसको बुरी लगती है भाई। अच्छा जनाब, एक मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक। यूके बैंड वाले भी छाए हुए हैं वैसे पंजाबी में। यूके बैंड कमाल, यूके से जो गाने आते हैं बहुत ही जबरदस्त, वीडियोस भी बहुत अच्छी। अच्छा जनाब, और नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं।
1: गाइस, आई जस्ट फिनिश्ड राइटिंग अ सॉन्ग एंड इफ यू हैव एवर लव्ड समवन, just give it a listen once, okay?

हैं जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। अच्छा जी असगर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपनी मोहब्बत और क्या कहूं मैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरी नूर के लिए आपके शो की जितनी तारीफ करें, नहीं करो तारीफ, कोई जरूरत नहीं जरी नूर, बस मोहब्बत प्यार। और इसी तरह आप जो है ना मैसेजेस क्या करें हमारे शो में, वो होता ना बाज़ लोग, नंबर वन मेरा शो होना चाहिए, ऐसा कोई मेरा कोई इरादा नहीं होता, बस आराम से रिलैक्स होके अपनी बातें करें, गपशप करें, दो घंटे का टाइम मजे से गुजरे, गाने अच्छे हों।

दो घंटे का टाइम मजे से गुजरे, गाने अच्छे हों। फोन कॉल्स वैसे जरा आपस की बात है, मैं बहुत मिस करता हूँ सारे वो दोस्त जो कॉल्स करते थे, उन तमाम लोगों को। अच्छा जनाब, इरफान भाई ने फिर मुझे मैसेज कर दिया, कह रहे हैं हिटलर के दौर में एक शायर गिरफ्तार हुआ तो उसकी बेटी ने माँ से पूछा कि बाबा गिरफ्तार क्यों हुए। माँ ने जवाब दिया, हिटलर ने के खिलाफ नज़म लिखी। बच्ची ने कहा, जवाब में हिटलर भी नज़म लिख देते। माँ कहने लगी, अगर वो इतने पढ़े लिखे होते तो खून खराबा क्यों करते। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ इरफान साहब, क्या बात जबरदस्त बात की आपने। और ये यहाँ के आज के हालात हमारे भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा जनाब, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम जो है ना वो अपने हिस्से का काम करें, और बाकी नेगेटिव खबरें भी आती रहती हैं, ज्यादा फेसबुक के ऊपर भी यकीन ना किया करें। अच्छा खैर, वो टीवी वाला तो मैंने खबरें देखने छोड़ दी, वो तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। लेकिन ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, यहां पर भी कुछ आंखें बंद करके आपने एतबार नहीं करना, जरा सुने, तहकीक करें, पता करें कि क्या ये खबर सही है या नहीं। हाय हाय चिको, पंजाबी में नहीं है भाई, कोई और लैंग्वेज में है, लेकिन मैं उसको पंजाबी वाला ही समझा।

है जनाब, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। रूबी जी कह रही है गुड सॉन्ग गुड शो, थैंक यू वेरी मच रूबी जी। और इसके अलावा दानिश हमें मैसेज कर रहे हैं, और दानिश क्या कह रहे हैं, अच्छा जी दानिश कहने घर एक दूसरे की शिकायतों से नहीं, एक दूसरे का पर्दा रखने से बनते हैं। ओ मैं कुर्बान मैं वारी, क्या खूबसूरत बात कर दी भैया, अच्छी बात है यार, वैसे बड़ी गहरी बात की। अक्सर फैमिली में होते ना एक दूसरे की शिकायतें, वो बस शुरू हो जाए, आप किसी की बुराई करना शुरू हो स्टार्ट करें फिर तो देखें आप, तो ऐसे घर जो है वो फिर ऐसे ही होते हैं, हर आदमी उनकी बुराई कर रहा होता है।

अच्छा जनाब, इसके अलावा वाह क्या उम्दा कही हिटलर के हवाले से। वाह जनाब, बेहतरीन वो तो बात कही उन्होंने। और इसके अलावा कहनी शहजादे, अब फेक न्यूज बहुत बढ़ गई, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और वो है कैसे।

भाई जनाब तेनू देख लेंगे। अच्छा ये गाना कम और धमकी ज्यादा लग रहा है, तुझे देख लूंगा मैं, ये उस तरह का इफेक्ट भी आ रहा थोड़ा, तेनू देख लेंगे, तू जाके किधर है भाई, तुझे देख लेंगे हम। बहरहाल जनाब सुन रहे हैं एफएम 100 और टाइम हो गया 10:30 और जब 10:30 होता है तो 3 मिनट की ब्रेक मुझे नजर आ रही है।

हाय जी, वेलकम बैक। सुन रहे हैं एफएम 100 और टाइम। यार बाकी में स्पीड पकड़ी हुई टाइम ने, फुल टाइम। वैसे एक बात है, टाइम ने तो स्पीड पकड़ी है लेकिन हम उतने ही सुस्त हैं, सोचते रह जाते हैं कि कल। तो दोस्तों, वक्त के साथ जो चल रहा है वो तो है कामयाब, और जो वक्त के साथ नहीं है वो फिर कमेंट लिख रहा होता है और लोगों को कुछ बुरा भला कह रहा होता है कि तुम यूं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। जो मसरूफ आदमी है उसके पास टाइम ही नहीं ना कमेंट लिखने का ना पढ़ने का। अच्छा जनाब, शादियों का सीजन भी है, शादियां भी हो रही हैं और शादी के गाने की भी रिक्वेस्ट आती है। तो जनाब ये भी आज की क्यू शीट में, पंजाबी शो और शादी का गाना ना हो ऐसे कैसे भैया।

अरे सदा राजा बड़ा पुराना गाना, अम्मी अब्बा के दौर का, लेकिन जरा नए स्टाइल से। चले जनाब शादी के गाने चल रहे हैं, तो एक और शादी का ट्रैक मुझे याद आ गया। जिन जिन लोगों की अनकरीब शादी है या हो रही है या आजकल में है, उन सबको मेरी तरफ से ये वाला भी ट्रैक।

हाय हाय, क्या बात है चिट्टा कुकड़। क्या कहने, क्या गाने थे यार, ऐसे सिंपल सादे, दिल को छू जाने वाले। अब नहीं बनते ऐसे गाने, क्या पता नहीं हम लोगों ने बचपन से सुने इसलिए अच्छे लग रहे हैं। कोई वजह है सही, ऐसा नहीं है कि ये गाना अच्छा, कोई वजह तो होती है ना, कोई चीज अच्छी लग रही होती है और इतने दिनों तक। और हम बात भी कुकड़ की हो रही है, मैंने पूजा पाठ भी हो जाए, जरा खाना पीना भी हो जाए। अच्छा जनाब, संजीदा जी बहुत शुक्रिया, कह रही भाई फारिग लोगों का ही काम है तनकीद करना। मैं तो कह रहा हूँ पहले से गाने पसंद आ रहे हैं, स्पेशली देसा दा राजा उनको पसंद आ गया। और कासनी दुपट्टा मशहूर होता है शादी के, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने कौन सा कहा है। जश्न आजादी पे सुन रही है, वैसे मैं तो आज सुना रहा हूँ आपको, लेकिन खुशी के मौके पे ये गाने होते हैं शादी में खास तौर पे। अच्छा शादी में इतने खुशी खुशी जो है ना, ये सारी चीजें हो रही होती, कुछ दिनों बाद पता चलता है ओए होए डैन को ले आए हम घर में। ये नहीं होना चाहिए, समझदारी का मुजाहरा होना चाहिए। और जो खवातीन या लड़कियां एक्सपेक्ट करके जाती है, पता नहीं क्या महल सोच के जाती हैं, उनसे मैं भी कहूंगा जरा हाथ हौला रखें, जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वैसा ही हो। अच्छा बुरा सब होता है, दोनों चीजों के लिए आप रेडी रहें, वो वक्त के साथ साथ अपनी समझदारी से आप उस घर को जाना, उस मकान को घर बना सकती है। वक्त लगता है, अभी अबू वाला टच आया वैसे मुझ में, फौरन लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेकिन वैसे मुझे याद आया कि अब शुगल मेला तो लगा ही रहता है, थोड़ी सी ये बात भी होनी चाहिए। और आजकल वैसे भी डिवोर्स के जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आजादी है, वो लालम जो भी है, लेकिन बाकी बात सही है, तलाक वाला सिलसिला जो है ना वो जरा बढ़ गया है, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। समझदारी का मुजाहरा किया करें, जज्बाती ना हुआ करें, जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अभी चिट्टा कुकड़ अभी काला भी नहीं होता कि तलाक फौरन हो जाती है, तो इस चीज का जरा ख्याल रखें, कम से कम कुकड़ का टिकार तो आ जाए। जनाब 2 मिनट की ब्रेक, मैं अभी चमले मारता रहता हूँ, प्लीज मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे से आप नोड़ा देंगे। अच्छा जनाब, 3-1 मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

भाई जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 हयात अहमद के साथ, और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर। इनामुल हक कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम इनामुल हक, कैसे हो भैया? अयाज भाई, शो इज गोइंग फैंटास्टिक। साहब ज्यादा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अभी नए नए गाने भी सुना रहा हूँ, लेकिन एक पुराना गाना भी है और मेरे बड़े फेवरेट, मैं रांझा तख्त हजारे दा। ओए अमजद हुसैन साहब की आवाज कमाल मुझे लगती है, लेकिन पहले जरा ये गाना मैं सुनाता हूँ और उसके बाद उनकी आवाज को शामिल करते हैं।

भाई जनाब जबरदस्त ये ट्रैक संजीदा जी कह रही बहुत दिनों के बाद राजा तख्त हजार बस बीच में मैंने प्ले किया था आज फिर हमारी क्यू शीट में शामिल और अमजद हुसैन साहब इनके तो मैं फैन हूँ बहुत बड़ा वाला पंखा हूँ मैं।

0: क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक और अमजद हुसैन की जितनी तारीफ की जाना कम है। यानी के पूरा माहौल बना देते हैं फुल टाइम। और राजा तख्त हजारा, बड़ी स्टोरियां हैं इसके ऊपर, बड़ी बातें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गहराई है, डेप्थ है इनकी। अब म्यूजिक भी देंगे, इतने दिनों बाद आप सुने फिर भी अच्छा लगता है। तो संजीदा जी को भी बहुत पसंद आ गया, और संजीदा जी बड़ा मिस कर रही थी भाई मिशी को। और मिशी जी को हमने जब ये बताया कि भाई लोग आपको मिस कर रहे हैं, तो उनका एक मैसेज भी आ गया, तो मैं चाह रहा हूँ जरा उनका मैसेज भी सुन लें भाई, क्या कह रही है वो मिशी जी की आवाज़ नेक्स्ट।
1: अस्सलाम वालेकुम, सो स्वीट ऑफ यू यार, बहुत ज्यादा सबको प्यार, बहुत सारा सलाम। और मैं भी सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बस कुछ मसरूफियात है जिसकी वजह से मैं शो में आ नहीं पा रही, आपको ज्वाइन नहीं कर पा रही, लेकिन जो भी मेरा पूछ रहे हैं, जो मुझे याद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी और जल्दी आऊंगी, बस थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खासतौर पर आप भी अयास।
0: मिशी जी को इंशाल्लाह जरूर मिलाएंगे, जबरदस्त हमारी एक्ट्रेस भी है, मिशी खान नहीं, वो तो इस्लामाबाद में होती है, ये दूसरी वाली मिशी है। अच्छा जी, और मिसेस फारूक गाना पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जरी नूर आपका भी शुक्रिया। और टाइम क्या कह रहा है भाई, टाटा बाय बाय का कह रहा है भैया, टाइम टाटा बाय बाय का कह रहा है। राइट जनाब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

इज एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? एंड मैं सलाम करता हूँ एवरीबॉडी, आप सब लोगों को. मैं आप सब लोगों को सलाम अर्ज करता हूँ और ये कहता हूँ कि सलाम अलैकुम पाकिस्तान, सलाम अलैकुम मेरे बहन भाई और दोस्तों और सज्जनों. दिस इज योर गुड फ्रेंड मोहम्मद अली शेहगी स्पीकिंग टू यू डायरेक्टली फ्रॉम एफएम 100 नेटवर्क. आप जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं कि मैं हर वेडनेसडे को आता हूँ दूर से. आपके जो आपका जो प्यार है वो खींच लाता है मुझे. तो एनीवेज दिस प्रोग्राम इज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट सच सेंटीमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज इंडिविजुअल लिविंग और डेड एंड डिजायर टू बी हिस्टोरिकल ह्यूमरस एंड फनी. थिंक ऑफ मी एज अ लिविंग ब्रीदिंग कार्टून. नन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन इन द शो आर टू बी टेकन too seriously to be true, and you must verify things heard in the show from an existing and a respectable source to be true. The writers and anchors of the show plead insanity, just such buzz cannot be held responsible if some words are just too spicy or hurting to you. You may not listen to this show if your sentiments are hurt easily or if you are below the age of one. Henceforth, parental guidance strongly advised. So, without much ado, हम करते हैं शो को शुरू. आज के हमारे साउंड इंजीनियर और सुपरवाइजर शो के सरकार भाई हैं जो लिस्ट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, पूरा प्रोग्राम चलवाते हैं. कभी कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है तो हमें वक्त पर बता देते हैं, इसलिए उनका हम बहुत शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा. अच्छा जी, सबसे पहले जो सॉन्ग इन्होंने लिस्ट किया है मैं वो पहले वह चला देता हूँ. और आपको ये बता दूं कि आज हमारे पास बहुत ही ग्रां कदर, ग्रां कीमत और बहुत नापैद आर्टिस्ट मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद सलीम खान, जो कि केमिकल इंजीनियर है मेरी तरह एनईडी से पढ़े हुए, मगर गाने का बड़ा शौक, गाने का शौक में वो बजा के गाते हैं, मतलब हारमोनियम बजा के गाते हैं और गजलें भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं, हर चीज गाते हैं. तो वो भी नगमा सरा होंगे इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए. तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाएगा नहीं. ये एक सॉन्ग है, न्यू लिस्ट इनलिस्टेड सॉन्ग.

I'm sure कि आपको ये उनका गाना हुआ सलीम साहब का गाया हुआ गाना काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाजा भी खुद बजाते हैं, गाते भी हैं, ये बहुत बड़ा कमाल होता है कि जो जो सुर वो गले से लगा रहे हैं वो ही सुर सुर सुर जो है वो गलियों से भी खेल रहे हैं। जो लोग इस तरह काम करते हैं वो कभी पीछे नहीं रह सकते, मतलब दुनिया में कहीं भी चला जाए कोई साजन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बाजा पकड़ा और शुरू हो गया।

अब सुनते हैं जनाब सजाद अली को, हमारे टाइम का सिंगर है और बहुत अच्छी तरक्की कर गए हैं।

वाह वाह वाह जी वाह वाह, जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया जनाब, मजा आ गया। अब इसके बाद के गाना गाने की तैयारी करें, जब तक मैं एक और गाना अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। जी

0: बता दूं कैसे बता दूं, ऐसे बता दूं कि अब जो है ना सलीम खान साहब एक और गाना गाएंगे, बहुत अच्छा गाना है, ए वतन प्यारे वतन,
1: ए वतन पाक वतन,
0: ए वतन
1: प्यारे वतन,
0: पाक वतन, पाक वतन, हम वतन, मेरे प्यारे वतन। ये मैंने भी बहुत अच्छे पहले पीटीवी के लिए गाया था, और पता नहीं एक जो प्रोड्यूसर थे वो जब भी उनका सॉन्ग होता था वो मुझे खेत पे ले जाते थे, और मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार खेत के अलावा भी कुछ होते हैं, हर तबके हर तबके। फिर मैंने कहा कि आप क्यों पहला कि यार मैं असल में इरिगेशन इंजीनियर था जो उन्होंने टीवी में लगा दिया, अब मुझे तो खेत ही नजर आता था तो इसलिए मैंने वो गा दिया था। अब वही गाने को सलीम खान साहब गाएंगे, अब तो खेत वेत कुछ नहीं है यहाँ ठीक है जी, शुरू करेंगे।

0: Oh, very nice, very nice, very nice. बहुत अच्छा गाना है ये, मुश्किल तरीन गाना है ये,
1: जी जी
0: उस्तादों ने गाया हुआ है,
1: उस्ताद अमानत अली खान
0: साहब, और मेरे ख्याल में धुन भी उन्हीं ने बनाई थी
1: जी।
0: और अफसोस की बात है कि मुझे शायर का नाम याद नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। अब हम चलते हैं कुछ हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी भी पसंदीदा कुछ गाने उन्होंने फरमाइश किए हैं, तो मैं वो गाने भी चलाऊंगा और ताकि मजा कायम रहे और मूड बना रहे, ठीक है ना। ये जनाब है

0: प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत मजा आ रहा होगा। हमें भी आज तो बस आज ईमान ताजा हो गई हमारी दोबारा। क्या बात है जनाब, आबदा परवीन, आखिर आबदा परवीन है के साथ साथ अली सेठी और जितने भी अशखास थे एहतराम के काबिल, बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया। मुझे खून जोश मारता है। ये ऐसी चीज है, इसमें कोई तसन्नो बनावट कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योरली फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से, हमारे दिल से आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, हमारा साथ देने का। अब हम सलीम खान साहब से एक और सॉन्ग सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी बड़ी मुश्किलों से यहाँ लाए हैं और आज सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनसे ये इस्तेमाल किया जाए, उनको इनको यूज किया जाए आज के लिए। सलीम साहब, आप क्या सुना रहे इस वक्त?
1: अब इस वक्त हम साथ गाएंगे मैं भी पाकिस्तान।
0: अरे चले जी, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। मैंने पता नहीं कितने अरसे पहले ये गाया था, मतलब ये गाना ऐसे ही गा दिया था, पांच गानों में ये गाना था। और रात सुबह 6 बजे मुझे उठाएगा भी, उठ जा उठ जा भाई, उठ जा उठ जा। हाँ, सामान ठीक हो गया, लोग आ गए, सिर्फ आपके 5 मिनट में ये गाना गा देना। अरे मैंने कहा 5 मिनट? बोला हाँ, बस यही मजबूरी, क्या करेंगे। और उस जमाने में एक गो में गाना होता था, कोई सामल्टी सिंक्रोनाइजेशन या डबिंग शबिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो मैंने वह गाना गा दिया और हुआ क्या, हम तो किसी और गाने की बात हाइप बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे मेरे वतन के। वो डिफरेंट गाना था, वो भी सैयब अख्तर का लिखा हुआ था, मगर ये सैयब अख्तर का भी लिखा हुआ था। ऐसे ही उन्होंने, चलो या गा दो, मैंने गा दिया। वो गा दिया, उसके बाद जो ये गाना चलना शुरू हुआ तो बस चलता ही गया। और उसी गाने को सलीम खान साहब जो है ना दोबारा से इसको गा रहे हैं, अभी से हारमोनियम के साथ है, मैं इनका साथ दूंगा।

राय अमर, आओ हम सब साथ चलें, कहती है ये राय अमर, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चलें, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चलें, धड़कन है पंजाब गई।

अरे वाह वाह वाह वाह जी वाह, मजा आ गया जनाब। आप तो पैसे तो वसूल हो गए टिकट के पैसे, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो सुनने वालों ने तो यह फेसबुक पर तो भरमार कर दी है। एक ने तो इतने हार्ट्स भेजे हैं, अभी तक भेज जा रहे हैं, वो इतने गोल्डन हार्ट्स। तो अच्छी बात है, ये खुशी होती है। ये हम आर्टिस्टों के लिए इससे बड़ी क्या पेमेंट नहीं है, इससे बड़ा अवार्ड नहीं है कि आप लोग सुने और आप लोग तालियां बजाएं और पसंद करें, क्योंकि इसीलिए हमें खुदा ने ये टैलेंट दिया है कि हम आप तक पहुंचाएं और अच्छी चीजें पहुंचाएं, अच्छी बातें पहुंचाएं, इसके साथ साथ अच्छा गाएं, बेसुरा बेताला नहीं गाएं। देखें ये गुनाह है, गुनाह मैं आपको बताऊं क्यों गुनाह है, क्योंकि सुर सच्चा है और सुर को जब नहीं लगाएंगे आप वो झूठ बन जाता है, तो झूठ तो गुनाह है। इसी तरह हार्ट बीट, आपका जो दिल चल रहा है वो हार्ट बीट है, और उससे जो हम म्यूजिक की जबान में कहते हैं लय, लय या बीट या रिदम, तो दोनों चीजें सच्चाई पर मुनहसर हैं, और सच्चाई सुर और लय है। ठीक है जी, हम अब आगे चलते हैं और ये गाना सुनते हैं। हाँ ये सुनिएगा, ये सॉन्ग इन दोस्तों ने बहुत अच्छा अरेंज किया है, बहुत अच्छा बनाया है। ये मैंने और एलन फेकिन ने गाया था ओरिजिनली, अब इन्होंने ये है। ओहो ये वो नहीं है, ये अलिफ अल्लाह या ये है आलिफ लोहार का है, बल्कि आलिफ लोहार के बेटे ने ये ट्यून बनाया।

0: running, driving, flying. Whatever you do, you listen. FM 100.
1: आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपसे खुदा हाफिज़ भी करूंगा। ये सॉन्ग जो मोहम्मद सलीम खान गाने वाले हैं, ये बहुत जबरदस्त सॉन्ग है, इसको सुनिएगा जरूर। और इसके साथ ही हम आपको गाने के एंड में अभी से खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर कह रहे हैं जी।

वेलकम बैक कहेंगे हबीबी। तो चाहे जिस मुल्क भी जाए मैं ही माहिवाल हूँ तेरा, सुनिए सुन जा आपके मैसेजेस के जाने बढ़ते हैं। और जनाब यूसुफ भाई बाबू से आ गए हैं, FM100 की तमाम फैमिली को सलाम का है, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानो, तमाम डॉक्टर इमरान भाई, खिताब गुल्लाला, गुफरान भाई, सबको सलाम। नदीम भाई कल अमीन भाई की बर्थडे है, कल 13 तारीख, फिर 14 तारीख को किसकी बर्थडे है हैं जी, और कह रहे हैं कि उनको मुबारक हो, सदा सलामत रहें। और मेरे बड़े भाई की भी, के बड़े भाई की बेटे यासिर की भी बर्थडे है, आप विश कर दीजिएगा। कोई और अच्छा सा गाना भी डेडिकेट कर दीजिएगा, अबरारुल हक का मीनामा कोशिश करेंगे बिल्कुल। और कल यूसुफ भाई आप मुझे जरूर जरूर याद दिलाइएगा बर्थडे के हवाले से। भाई आज तो इधर से फीता काट दिया है, दुबई से फीता कट गया भाई, क्या बात है। तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और करारदार के हवाले से क्या मैसेज लिखा हुआ है, अच्छा जनाब वाह वाह वाह वाह वाह भाई, भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। और सवाल में थोड़ी सी तब्दीली कि मीनारे पाकिस्तान जिस जगह वाक़े है उस जगह का नाम जो है वो क्या है, ये बिल्कुल मैं, मेरे ख्याल है ये दुरुस्त तरीका है। तो तसीह की है फरहीन ने दुबई से, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हमने फरहीन, ओके टेक। और जी जनाब सवाल मैंने जो आपसे किया वो ये किया है कि मीनारे पाकिस्तान जो है वो जहां वाक़े है उस जगह का नाम क्या है, और उसके साथ साथ ये भी कि वजह है मीनारे पाकिस्तान वो जगह यादगार जगह किस वजह से है, ये भी आपसे पूछा है। अच्छा जी आपको शो 6 मंथ से सुन रही हूं भाई, अच्छा शो करते हैं। मेरी अम्मी अफशा को कैंसर का आया है, दुआ करें कि 17 डेट को मेरी अम्मी की रिपोर्ट क्लियर आए प्लीज भाई, बहुत टेंशन है मुझे और ऑल फैमिली को, फैमिली रिक्वेस्ट है। अच्छा भाई सबसे पहले तो आप अपना नाम जरूर तहरीर कीजिए, आपकी अम्मी अफशा जो हैं उनके लिए ढेरों हमारी जानिब से दुआएं हैं। और आप जो भी हैं, आपने नाम नहीं लिखा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब ये काबिले इलाज बीमारी है, लेकिन काबिले कैंसर जो है वो काबिले इलाज बीमारी है, मगर इसके लिए जरूरी ये है कि इसकी भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बस दुआ यही, सबसे पहले तो दुआ ये है कि अगर ये डायग्नोज हुआ है तो ये बिल्कुल शुरुआती कंडीशन में हो ताकि इसका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। और कैंसर के जो मरीज हैं वो शिफायाब होते हैं अगर स्टेज जो है वो बढ़ ना गया हो, बस यही, ये भी दुआ करें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रिपोर्ट जो है उनकी बिल्कुल क्लियर आए, आमीन सुम आमीन, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। जाहिर है ये वक्त जो है कड़ा वक्त है और इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा और अम्मी जो है वो अफशा साहिबा जो है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेहतियाबी की जानिब गामजन हो जाएंगी। रेहान कह रहे हैं मैं भी

0: भाई।
1: हाय हाय, अबे इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। एक तो ये कैंसर की खबर आ गई और रेहान कह रहे हैं कि भाई का इंतकाल 6 दिन हुए हो गया। तो इन अल्लाह व इन अल्लाह राजीऊन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। रेहान बहुत अफसोस हुआ, क्या कह सकते हैं भाई, अब इस तरह तो होता है, हर एक ने जाना है। मेरी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई है कि नहीं, सलाम कैसे हैं वाले साहब संजू को और तमाम सुनने वालों को, उन्होंने सलाम कहा है। और संजू के नाम अच्छा सा गाना कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे जनाब, डोंट वरी। नदीम भाई द पख्तून तोरा टॉपिक जमा टोपक जमा कानून दस्ता कानून दीजिए, द पख्तून कानून ना दीजिए। खबर और साहबजादा साहब टोपक जमा कानून, ये एक पिक्चर का नाम है, बहुत जबरदस्त। वैसे एक हवाले से ये आजकल यही है, आजकल यही कानून है, टोपक जमा कानून दीजिए। और जनाब आगे बढ़ते हैं, आपके और चंद मैसेजेस की जानेब। यासन खान दिल भर जान दास खान है यारा, रागले जी जी सलाम नदीम भाई जान संग यारा खाई जी, और पखेर रागले 14 अगस्त मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आउ खान है यारा दास खान है यारा। और मुसविर तामीरात नसीरुद्दीन मिर्जा, वाह वाह वाह वाह, मीनार पाकिस्तान बनाए यार, ये सवाल तो करना था मगर मैंने पढ़ दिया रवानी में। और इन्होंने जवाब दिया है जनाब, अच्छा मैं जवाब आपको बता देता हूँ, बताने से मुरादी है कि जो आप जवाब लिखेंगे वो जवाब मैं पढ़ता रहूंगा और जो दुरुस्त होगा वो आखिर में बताएंगे। और इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान वहां वाकई है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वहां वाकई है। तो इन्होंने इकबाल पार्क बताया जनाब नाम। और आगे बढ़ते हैं, समी भी आज आ गए, क्या बात है समी तुम आ गए, कहां गायब थे भाई। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप, सलाम टू गुफरान भाई एंड ऑल लिसनर। गुफरान भाई आज नहीं है। और एक मिली नगमा उन्होंने कहा चला दीजिए, सोई हुई कौम कभी नहीं जागती, हम सब सोए हुए हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेट्रोल जितना महंगा हो या महंगाई और ऊपर जाए, इसलिए हमारे ऊपर के लोग इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल बेहतर कहा आपने। मीनार पाकिस्तान का ओल्ड नाम आई थिंक वो जिस जगह पर मौजूद है मंटो पार्क, इन्होंने मंटो पार्क बता दिया भाई, उन्होंने हमें क्या बताया, इकबाल पार्क। ठीक है जनाब, दो नाम आ गए, अब और कोई नाम आया, अब वजह भी बताइए मीनार पाकिस्तान क्यों तामीर किया गया। संजू आ गए हैं, हाय हाय क्या बात है भाई, इतने सारे मैसेज। यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहें। माह आजादी के सफर में खुश आमदीद कहती हूँ, बरोज मंगल एक नई मालूमात का खजाना लिए प्रोग्राम रहा, मुझे आपकी मालूमात के बारे में कुछ नहीं पता था, बहुत कुछ समझने को मिला। नदीम जजाकल्लाह इस अपने पन के साथ, इंशाल्लाह ताला इख्तिताम तक साथ हूँ, वाजिवा। आज आपके मतलब बहुत बहुत शुक्रिया पजीराई का, लेकिन वो जो धक धक वाला मैसेज आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और वाओ जबरदस्त मिली नगमे से शुरुआत की है, जज्बा जनून आपकी आवाज में जोशो खरोश काबिले दीद है। और अरे भाई क्या बात है, बड़े बड़े लोगों की भी सालगिरह है, मैम राबिया की सालगिरह है आज, तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। और अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ अपनी रहमतें और बरकतें रखे, आमीन सुमा आमीन। मैम राबिया के लिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं की हैं। और रूहन बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैम राबिया के लिए एक बहुत आइकॉनिक किस्म का नाम और आइकॉनिक शख्सियत आवाज की दुनिया में मैडम राबिया का, और काबिल एहतराम काबिल इज्जत और उस्तादों का दर्जा रखने वाली खातून, और उनको हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और संजू की जानिब से भी करेंगे, उनको बर्थडे विश भी करेंगे, और इसके साथ साथ उनको जो है एक अच्छा सा ट्रैक भी डेडिकेट करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर हम लेकर जाते हैं आपको एक और नगमे की जानिब, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। ख्याल रखना भाई, ख्याल रखना और ख्याल रखना। तो जहां आप बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरा नाम अली मख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब। कितने बजे तक? 3 बजे तक। आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। और अमीन हमारे शहजादे बड़े बॉय आ गए हैं और कह रहे हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, शो ऑसम बिंदास बोले तो झकास एफएम 100 फैमिली को सलाम। अभी ज्वाइन किया है मुझे जिसने विश किया, उनका उन सबका बहुत बहुत थैंक्स भाई। सबसे पहले तो आपको यूसुफ भाई ने जो है विश किया है। और अमीन कह रहे हैं कि अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब को भी, उनके भतीजे को और जिन जिन की बर्थडे है मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा एस जी को। ओएसटी वगैरह कुछ नहीं होगा, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा आजकल, आपको पता ही है, लेकिन हम आपकी जानिब से ट्रैक जरूर चलाएंगे और आपको भी डेडिकेट करेंगे सोने। और सवाल का जवाब है लाहौर में वाकई है, बिल्कुल लाहौर में वाकई है, लेकिन वो जो जिस जगह वाकई है, जिस पार्क में वाकई है, उसका नाम क्या है और पुराना नाम उसका क्या है। और जबरान यूसुफ जई साहब कह रहे हैं आपको और सब लिसनर्स को सलाम, और जिसने आजादी मुबारक हो, क्यों का जवाब बादशाही मस्जिद का किला है। क्वेश्चंस का, अच्छा क्यों का जवाब, क्वेश्चन का जवाब जो है वो बादशाही किला है। मैंने सवाल ये किया, एक बार फिर सुन लीजिए जबरान भाई, कि मीनारे पाकिस्तान किस जगह यानी कि किस पार्क में वाक़ है, उसका पुराना नाम क्या था और किस वजह से मीनारे पाकिस्तान तामीर हुआ, ये भी बताइएगा। वो किस चीज की यादगार है। जश्न 23 मार्च 1940 को करारदार लाहौर मंजूर हुई थी, इस तहरीकी वाक़े की याद में जो है जरीन नूर ने बोला कि मीनारे पाकिस्तान बना 1940। साहिबजादा साहब ने बताया सेम टू सेम। ओके जनाब, ये तो वजह बता दी आप लोगों ने, ये वजह दुरुस्त है या नहीं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो जवाब आप जो आप लोगों की जानिब से आ रहे हैं दुरुस्त है नहीं है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। और मैम राबिया के नाम कुछ भेजा है लेकिन यह मैं ये चाह रहा हूं संजू, आपका जो मैम राबिया के लिए आपने जो खूबसूरत इंतखाब भेजा है वो हम उस वक्त शामिल क्यों ना करें जब हम उनको प्यारा सा गाना डेडिकेट करें। लेकिन दिल की खुशगवार धड़कनों की मीठी सी थक थक से शुक्रन कहती हूं। मेरी बिया यानी कि मैम राबिया को मुबारकबाद दी, मैं खुश रूहान, अभी और खुश होंगी आप कुछ ही देर में जब हम उनको ट्रैक डेडिकेट करेंगे। समी कहते हैं कि क्या कहते हैं समी, क्या कहना, क्या कहना है भाई। मीनार पाकिस्तान का ओल्ड नाम आई थिंक मिंटो पार्क था, एक बाल पार्क में वाक़ है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और आज मार्केट गया हुआ था शादी की शॉपिंग करने, माशाल्लाह से इंशाल्लाह अगले साल अपनी होने वाली बेगम के साथ 14 अगस्त का बाजा बजाऊंगा। फिलहाल अपना बाजा तो बजाओ यानी समझ रहे ना, पहले अपना बाजा बजा लो, जब बैंड बज जाए तो उसके बाद फिर बजाना जो जी गया है। अल्लाह पाक अफशा साहिबा को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए और रहमान साहब के भाई की मगफरत फरमाए, आमीन सुमानी। समी मेरा शहजादा कह रहा है और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ख्याल रखने का रिमिक्स वाला वर्जन भी अच्छा है, मुझे ये पसंद है, मैं यही चला रहा था। कह रहे मेरे वतन मेरे बस में हो तो कुछ रिश्तेदार तुझ पर निसार कर दूं वाला। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है नदीम भाई, यार ये आइडिया वैसे अच्छा है। और हैप्पी बर्थडे कहा है उन्होंने अमीन भाई को, और उसके साथ साथ मैम राबिया को भी आप लोग बर्थडे विश करेंगे नाल नाल। हैं जी जी, हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों शामिल खान दिल पर जाना चढ़ता भी यार, एक मैसेज करके खराब हो गया थोड़ी यार। नाइस क्यू शीट, वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग सेज फरहीन फ्रॉम दुबई, थैंक यू वेरी मच। और करारदाद पाकिस्तान में मंजूर हुई थी और उसकी याद में, क्या बात है, कितनी अकलमंद। और इन्होंने जो जवाब लिखा है वो बड़ा खूबसूरत मुख्तसर तफसीलन है,
तो वो मैं अगर पढ़ूंगा तो 100% आपको यकीन हो जाएगा कि वो दुरुस्त जवाब लिखा हुआ, तो इसलिए वो मैं पढ़ नहीं रहा। और प्यारी सी जरी और मोश नौरीन बहना के लिए प्यार ही प्यार और सुकून से सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। वकीद साहब आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भी ओके टेक है, हम भी हाजिर हैं नवीन भाई। नवीन भाई, जो लोग मैसेंजर्स पर मैसेजेस करते हैं काफी लेट सीन करते हैं, ऐसी बात नहीं है वकीद साहब। देखिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस 3636 के, ये तो आप लोगों की मोहब्बत में मैं जो है वो पढ़ देता हूँ। आप 3636 पर मैसेज करें, देखें फटाक करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि भाई ये जिस तरह मैसेज करते हैं, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से और जिस जेब खर्च से, पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, मैसेंजर्स पर पैसे थोड़ी लगते हैं। तो लिहाजा वो जब मुझे फुर्सत मिलती है तब मैं पढ़ता हूँ, वरना नहीं पढ़ता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं, मतलब अगर 3636 पर मेरे पास मैसेजेस की भरमार होती है तो फिर मैं मैसेंजर पर बहुत देर से आता हूँ, यानी कि समझ रहे हैं ना। और मैसेंजर पर आने की वजह ज्यादातर ये होती है कि मुख्तलिफ शहरों से जो लोग सुन रहे होते हैं तो उन के मैसेजेस जो है वो भी मेरे लिए काबिले एहतराम और मोहब्बत भरे, प्यार भरे, चाहत भरे होते हैं ना, मतलब सभी के होते हैं, मगर जाहिर है वो दूर से कर रहे होते हैं तो उनको शायद 3636 वाला जो सिलसिलाकार है वो उनकी में शायद उनको परेशानी होती हो, तो सो इस वजह से ये सिलसिला था। मिर्जा साहब आ गए फ्राम गुज्जर खान, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब, आइए खुश आमदीद की आ रहे तो असाना जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, जुनून लाजवाब, क्या कहने हैं बाबा नदीम भाई, मेरे पाकिस्तान का पूरा नाम यादगार है। अच्छा, ये मारे अपा मेरे नदीम भाई, मेरे पाकिस्तान का पूरा नाम यादगार है, यादगार पाकिस्तान कहते हैं उसको, ये भी कहते हैं। और नदीम भाई, वाकई जब भी अपने वतन का मिली नगमा सुनो तो दिल में जज्बा पैदा हो जाता है, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और भी मैसेजेस की जानेब आपके जाएंगे, और लेकिन अभी आपको एक ट्रैक की जानेब लेकर चलते हैं, और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट करेंगे संजू को जरीन और की जानेब से, है जी, हैं जी, हेलो फड़ो जी।

वहाँ वहाँ वहाँ चले आओ वहाँ. ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट. और जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर, और कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बड़ी मजेदार किस्म की पहाड़ों के हवाले से बातें बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम नदीम सर, क्या हाल है? मेरी तरफ से भी मैडम रबिया को हैप्पी बर्थडे. एक थी मुश्की, जीती रहो मुस्कुराती रहो, आ गई आखिरकार. हैं जीते हैं जी. अमीन कह रहे हैं थैंक यू सो मच नदीम भाई विश करने का, डेडिकेशन का. बिना चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, एफएम 100 से दोस्ताना हमारा. बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना, एफएम 100 से दोस्ताना हमारा. स्वीट प्यार एने भाई, जीते रहो मुस्कुराते रहो शाद रहो आबाद रहो. भाई सालगिरह कैसे मना रहे हो भाई? बर्थडे अपनी सेलिब्रेट जरूर करना. और वैसे एक आपको मैं बात बताऊं कि सालगिरह जब किसी भी इंसान की होती है, गो के जिंदगी का इस दुनिया में एक साल कम हो जाता है और वापसी की परवाज जो है वो करीब से करीब तर आना शुरू हो जाती है, मगर इस दुनिया में ये सालगिरह जो मनाने का रिवाज है, जो तरीका है, ये जिस इंसान ने इजाद किया, गो के देखें अच्छे बुरे इंसान इस पूरी दुनिया में रहे हैं, लेकिन ये सालगिरह मनाने का जो रिवाज है ये तो फिरौन के जमाने का है और उसके जमाने से ये सारा सिलसिला कार चला. मगर अगर हम बीइंग अ मुस्लिम इस पर एक नजर डालें तो जिस भी अमल से किसी इंसान को खुशी मिलती हो, उसका दिल खुश होता हो और उसको अच्छा लगता हो, लोगों को अच्छा लगता हो, तो वो अमल और उसमें कोई नुकसान ना हो, किसी का कोई दिल आजारी ना हो, नुकसान ना हो, चाहे वो पैसों का हो, जिस्मानी नुकसान हो, जहनी नुकसान ना हो, बल्कि जहनी सुकून हो, तो उसमें हमारा दीन हमारा इस्लाम भी कहता है कि कोई हर्ज नहीं वो ऐसा अमल करने का, अमल करने के लिए. तो सालगिरह जो हम मनाते हैं वो इसी तर्ज की होती है कि जहनी सुकून खुशी ये मिलती है. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उम्र का हिस्सा जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है और जिंदगी जो है वो आगे बढ़ने लगती है. शुरू शुरू में तो जाहिर है जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं और उसके आने की, और सालगिरह भी मना रहे होते हैं, पहली सालगिरह मेरे बच्चे की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दसवीं, बीसवीं, इस तरह का सिलसिला चल रहा होता है तो सेलिब्रेशन होती है. लेकिन जो माँ बाप होते हैं, जब वो इंसान माँ बाप के दर्जे पर आता है और उसके बाद दादा दादी के दर्जे पर आता है, तो ये जो चीजें हैं वो इसकी जो विशिंग है, जो मुबारकबाद है, जो वो उसमें थोड़ी सी आसपास से जो है ना कमी वाकया शुरू हो जाती है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ऐसे ही जहां में ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि उनकी सालगिरह आती है और गुजर जाती है, किसी को याद भी नहीं रहता, अरे इसकी सालगिरह थी, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चले आ रहे यार, बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें. तो मगर आप ये अगर समझते हो तो या किसी के साथ ऐसा वाकया हुआ हो कि जब वो वक्त गुजर जाता है ना तो दिल को ऐवें जो है ना हल्का सा धचका सा लगता है कि यार इसने मुझे विश नहीं किया, यार ये मेरी सालगिरह भूल गया, ऐसे ही याद आता है. तो कोशिश ये किया करें जो आपके प्यारे दोस्त अहबाब, अम्मी अब्बू, दादा दादी, चचा मामू, जो भी है आपकी जिंदगी में रिश्ते, उनकी बर्थडे जो है, उनकी जो सालगिरह है, अगर कोई तोहफा नहीं दे रहे, अगर उसको भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज से मनाया नहीं जा रहा, तो कम से कम एक मैसेज के थ्रू, एक कार्ड के थ्रू उनको मुबारकबाद जरूर दें. यकीन माने बड़ी खुशी होती है, दिल बहुत खुश होता है सालगिरह की मुबारकबाद जब मिलती है. तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे भाई, और जिन जिन की सालगिरह है उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो.
और ये एमी मेरे दिल में बात आई तो मैंने कहा कि आप लोगों की समातों तक ये भी बात पहुंचाऊं अपने दिल की हाँ। अच्छा जी अमीन का थैंक यू वाला हो गया मैसेज, और उसके साथ साथ साहिबजादा कह रहे हैं नदीम भाई मीनार पाकिस्तान का नाम गलती से पहले यादगार पाकिस्तान रख दिया गया था। गलती तो नहीं कहेंगे यार, वो एक यादगार थी करारदार पाकिस्तान की वजह से उसको यादगार का नाम दिया गया था, फिर मीनार पाकिस्तान हुआ और जिस जगह यानी जिस पार्क में वो बनाया गया उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ज्यादातर जो जवाब आ रहे हैं वो मंटो पार्क आ रहे हैं, एक बाल पार्क भी आ रहा है। राबे आप ही को हैप्पी बर्थडे, जरीन नूर कह रही हैं भाई बर्थडे हम सबकी जानिब से है, सबीन आ गई हैं, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन कैसी हो। और मिर्जा साहब की कहने पे ने नदीम भाई वो समी और बहन और कायनात और मालूम सब किधर गए। समी भाई बहन लिख दिया आपने भाई की जगह, समी भाई और कायनात और सब और मालूम सब किधर गए। मालूम मतलब अच्छा रुबाब। नदीम भाई ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है आओ वहां चले आओ। नजम शराज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि उनकी आवाज यूनिक आवाज है, बिल्कुल उनका स्केल बहुत हाई है ये। अच्छा अब आप जिन लोगों का पूछ रहे हैं तो देखिए जिंदगी में ये आना जाना लगा रहता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल हमारी जगह कोई और यहाँ पर मौजूद होगा। तो हम तो सबसे मोहब्बत और प्यार करते हैं भाई, अपनी मर्जी पर कोई आता है तो हम दिलो जान के साथ उनको जो है वेलकम करते हैं, और कोई अगर नहीं आता तो हम यही समझते हैं कि शायद नाराजगी है या फिर कोई मसरूफियत है। जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। समी तो हमारे साथ साथ है, कायनात की शादी हो गई है वो वहां मसरूफ है, और उसके साथ साथ हमारे प्यारी सी मेरी बहन अरूसा जो है उनके साथ मुझे चंद दिनों पहले एक बात पता चली। मैं अपनी बहन को जो है इस हवाले से कुछ कह भी नहीं सका अभी तक, उसको मैं जरूर कॉल करूंगा। जो है उनके यहाँ एक सानिया हुआ जिसकी वजह से वो गायब हैं, वैसे तो वो उससे पहले भी गायब थी। हमारी प्यारी सी चाची के साथ भी ऐसा ही सिलसिला है कार, और कुछ हमारे बहुत बेतहाशा लिसनर्स ऐसे हैं जो कि टेलीफोन कॉल्स सिर्फ करते थे, तो उनकी भी कमी आप लोगों को महसूस होती होगी। तो इस तरह ये सिलसिले कार मिर्जा साहब नालो नाल चलते रहने ने यार की सीरियस मैंने कर देता तुसी। हैं जी हैं जी। और आगे बढ़ते हैं, बस कुछ चीज बाकी रह गई। नदीम भाई पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला हूँ, मेरी दीवारें 32 किलोमीटर लंबी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों में से एक कहा जाता है, और सिंध में हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अच्छा ये सवाल कर दिया है आपने, वाह वाह वाह, नेक्स्ट शो में ये सवाल रखिएगा, इसका जवाब आपको पता होगा। अच्छा जी मालूम, बिल्कुल मालूम है जनाब समी साहब। और जनाब वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त तस्वीरें आई हैं मेरे पास भाई मेजोज। हमारे फरहान भाई आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल स्वीट स्वीट लिसनर्स, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे। अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी। अब अम्मी जी के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमारी आयशा जी ठीक है जी, और हमारे शहाब साहब, और बेतहाशा मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर है। अच्छा जी तमाम दोस्तों के लिए उन्होंने ढेरों सलामती की दुआएं दी हैं। मीनार पाकिस्तान करारदाद दे पाकिस्तान जो कि 23 मार्च 1940 में मंजूर हुई थी उसकी याद में बनाया गया था, मगर ये बना 23 मार्च 1960 में मंटो पार्क में, अब उसकी जगह मीनार पाकिस्तान है। रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जनाब, डेडिकेशन जरूर कर सकते हैं। फरहान भाई बातें बहुत हो गई हैं और अब आप लोगों को एक ट्रैक की जानिब ले जाना है, तो समी आपका ट्रैक जरूर चलेगा, यानी कि मिली नगमा डेडिकेशन होगी, और इसी तरह हमारे छोटे भाई नवीद साहब उनकी भी एक मिली नगमे की डेडिकेशन है, वो भी जरूर होगी। हमारी प्यारी सी बहन अदीला आप भी बेफिक्र रहिएगा, जरीन आप भी बेफिक्र रहिएगा, सबके लिए ट्रैक हम जरूर चलाएंगे।
और अभी फिलहाल हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम हमारी प्यारी सी बहन अदीला को डेडिकेट कर रहे हैं और उनकी जानिब से जिन जिन को भी वो डेडिकेट करना चाह रही हैं उन सबको भी डेडिकेट करेंगे। तो मेरी प्यारी सी बहन अदीला, ये आपके लिए है।

वेलकम बैक कहेंगे, ब्यूटीफुल ट्रैक। और अब जिस ट्रैक की जाने हम जा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा मिली नगमा, और ये हम समी की जानिब से आप सबको डेडिकेट करते हैं।

वेलकम बैक आएंगे तू हवा तू सदा हरिका कयानी की आवाज और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पाकिस्तानी मिली नगमों की भी अपनी एक बात है, अपनी पहचान है। क्या बात है, दिल में वाकई उतर जाते हैं। तो पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपके मैसेजेस एक दो शामिल कर लेता हूं। वकीद भाई का मैसेज है और कह रहे हैं कि गुड नाइट अदीम भाई, काफी लोग आपके सुन रहे हैं बाहर से, जैसा कि उनसे भी आपको सुन रहा है, कोई नाम आप बताओ।

सुन रहा है, कोई नाम आप बताओ कौन हो सकता है जो इस वक्त आपको यूके से सुन रहा हो। यूके से, यार यूके दो है, एक तो यूके है यूनाइटेड किंगडम और एक यूके हमारा उमरकोट। उमरकोट से हमारे जो भाई आते हैं वो तो हमें, मुझे याद है भाई शो तो आपका सुन ही रहे होते हैं, लेकिन जब आप लेट सीन करते हैं तो हम थोड़ा उदास हो जाते हैं, माजरत के साथ। अरे मेरे शहजादे, ऐसी बात नहीं अकीद भाई, अगर ऐसी बात हो तो आपसे बस यही है कि आप 3636 पर मैसेज कर दें, आपको इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और हमारे समी भाई ने शुक्रिया अदा किया है, अमीन भाई का भी मैसेज आया है। पहाड़ों के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि हमारे पाकिस्तान जो है उसमें तकरीबन 5 चोटियां ऐसी हैं जिनकी बुलंदी जो है वो 8000 से ज्यादा है। अच्छा, पहाड़ी सिलसिला जो है ना, इसको बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जहन में रखें कि हमारे पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले में जैसा कि मैंने कराकोरम के हवाले से आपको बताया और कोह हिमालया के हवाले से आपको मैंने इस हवाले से बताया और हिंदूकश के बारे में बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। खैर जी, पाकिस्तान में दुनिया की बुलंद तरीन जो चोटियां हैं उनमें जो है दूसरे नंबर पर जो आती है माउंट एवरेस्ट, तो आपको पता ही है कि दुनिया की नंबर 1 चोटी है, और उसके बाद K2 का नाम आता है, और K2 जो है वो पाकिस्तान में वाकई है। अच्छा, K2 के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 8611 मीटर जो है बुलंद है, और ये जो सिलसिला है, ये पहाड़ी जो सिलसिला है जिसमें K2 वाकया है, ये कराकोरम जो है ये आपने सुना होगा और शायद इसके बारे में पढ़ा ना हो, लेकिन कराकोरम सिलसिले का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें वाकई है K2 जो कि 8611 मीटर है। इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन जो है वो पहाड़ तो है ही है, चोटी है ही है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में वाकई नहीं है। आपको ये बताऊं, ये K2 का जो पहाड़ है ये आधा पाकिस्तान में वाकई है और आधा चीन में है। तो चीन भी ये कह सकता है कि जी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन जो पहाड़ी चोटी है या जो पहाड़ है वो चीन में वाकई है, बिल्कुल कह सकता है, लेकिन चीन ऐसा ज्यादा डिक्लेयर नहीं करता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह ताला का एक करम है पाकिस्तान पर कि K2 का पहाड़ का जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ वाकई है उससे बहुत मतलब जो चोटियां सर करने वाले जो दुनिया में लोग मौजूद हैं वो उनको रास्ता वहां से मिलता है, वहां से रास्ता है उस K2 की पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का, लेकिन जो हिस्सा चीन की जानिब है वहां से जो है वो आप जो कोपेमा है जो वो पहाड़ को सर करने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता, तो इसी वजह से K2 जो है वो पाकिस्तान में वाकई है, पूरी दुनिया में यही मशहूर है। उसके साथ ही हमारे पाकिस्तान के रेटिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान में चोटियां मौजूद हैं तो K2 के बाद जो है नानगा पर्वत जो है वो बुलंद तरीन चोटी है जिसकी बुलंदी जो है वो 8000 से ऊपर है, तकरीबन उसकी जो बुलंदी है वो 8126 मीटर है, तो मतलब कोई समझ लीजिए कि 400 या 500 मीटर का फासला है बस K2 और इसके दरमियान में, फर्क जो है वो 400-500 मीटर का है। तो लेकिन ये जो है दुनिया मतलब ये बुलंद तरीन चोटियों में नांगा पर्वत भी आता है, और ये सिलसिला नांगा पर्वत का जो है वो कोहे मतलब पहाड़ी सिलसिला कराकोरम में नहीं है, ये कोहे हिमालया में है। ये हिमालया का जो पहाड़ी सिलसिला है हमारे पाकिस्तान में ये उसमें वाकई है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे पीक्स आ जाती हैं, इनको पीक्स कहती है, ब्रॉड पीक्स एक आ जाती है और एक आती है, इनके नाम बड़े मुश्किल मुश्किल से हैं तो वो जुबान पर आते नहीं है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। तो एक है गाशियर अव्वल जो है, ये कराकोरम में ही ये पहाड़ी सिलसिला है और ये भी तकरीबन 8080 ये तीसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान में, और इसी तरह मैंने जैसे ब्रॉड पीक का

आपको बताया है वो 8051 जो है उसकी बुलंदी है। ये ज्यादातर जो आपको बुलंद पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलेंगे वो कराकोरम में मिलेंगे, और हिंदू कश में जो है वो आपको जो मिलेगा वो तिरचमीर के नाम से एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी है 7,708 मीटर, ये हिंदू कश में। और हिमालय में जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ नांगा पर्वत है, बाकी तमाम जो बुलंद पहाड़ियों के जो सिलसिले हैं वो आपको कराकोरम में मिलेंगे। तो खैर ये एक बड़ी तफसीलन अगर तफसील है इसकी, एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, बस इतना आपको बता दूं कि बुलंद तरीन मैंने क्योंकि आपको मीटर में बता रहा हूं तो K2 की जो मैंने आपको बताई है बुलंदी 8,611 मीटर बुलंद है, तो अगर मैं इसको फुट पर आ जाऊं ना कि 1 फुट 2 फुट 3 फुट इस तरह आपकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूं, तो ये तकरीबन 28,251 फिट की बुलंदी जो है वो इस पहाड़ की चोटी है वाकई। और ये कराकोरम का सिलसिला भी आपको ये भी बता दूं कि ये गिलगित बल्तिस्तान की जानिब है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। और आपको एक और बात बताऊं कि बड़ी मतलब नॉलेज में इजाफे के लिए कि दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी जो है पाकिस्तान में नांगा पर्वत जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। माजर चाहूंगा, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। हाँ जी, नांगा पर्वत के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये एक इसकी वजह शोहरत एक और भी है, गो कि ये भी बड़ी बुलंद तरीन पहाड़ियों में, दुनिया की 11 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में इसका भी शुमार होता है। इसको जो है वो किलर माउंटेन भी कहते हैं। किलर माउंटेन से मुराद ये कि मौत का पहाड़, मौत वाला पहाड़, बड़ा खतरनाक किस्म का है और जो जानलेवा है। तो खैर ये थोड़ा सा मैंने आपको सिलसिला बताया, पहाड़ी सिलसिला। और अमीन कह रहे हैं कि अयूब लाला ये तो यार तुमने बिल्कुल, मैं बस वो क्योंकि डिटेल बता रहा था ना, तो लाला जो है ना, लाला कहाँ गायब है आज, लाला कहीं ना कहीं बिजी होंगे। और अमीन कह रहे हैं कि लाला अयूब लाला हैप्पी बर्थडे पे आम वाला केक गिफ्ट कर दें, क्योंकि आप किंग ऑफ मैंगोस के फादर्स जो हैं वो चौसा आम, हर तरफ आम है और आम है, आम ही आम है। और आपको एक और बात बताऊंगा, आज जो है ना एब्सेंट है अयूब लाला की भी, एब्सेंट लाला भी हैं और साथ में हमारी प्यारी छोटी बहना जो है सबा गुल भी एब्सेंट है, उसके साथ ही महानूर भी एब्सेंट है, बाबू कहते हैं। और ये मतलब ये तीनों जो है ये भी एब्सेंट है। अच्छा भाई, संजू खामोशी के साथ सुन रही हैं, हमने डेडिकेशन कर दिया संजू को, यानी कि समझ रही है ना, कोई बात बात कर लें। आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ने वालों को अफाका होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की सबीन आपने। 9th क्लास वालों के जो सवाल अगर मैं आपसे कर लूं तो बेतहाशा जवाब आपको नहीं आएंगे। ये वो चीजें हैं कि जिन्होंने पढ़ा है उनको याद है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी बातें, पाकिस्तान की हसीन बातें जो कि हमें याद ही नहीं है। बस यही थोड़ा सा सिलसिला होता है कि हम इस चीज को मजाक में ले जाते हैं या इस पर टॉन्ट कर रहे होते हैं कि भाई 9वीं क्लास की बात लग रही है नदीम भाई जो आप बता रहे हैं, वो याद आ गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है, कोहे हिमालिया के बारे में आपको कितना पता है, कोहे कराकोरम के बारे में आपको क्या पता, पहाड़ी सिलसिला जो पैराडाइज ऑफ माउंटेन क्यों कहते हैं पाकिस्तान को, ये हम लोगों को पता हो तो बात है ना। पेट्रोल की कीमतों के बारे में भी पता है, हम हर चीज को नजरअंदाज कर रहे होते हैं और बस यही वजह है कि हम इस हाल पर पहुंचे हैं। खैर, हम मेरा जो फर्ज है यहां पर बैठकर बताने का वो तो मैं बताऊंगा आपको, चाहे 9th की जमात लग रही हो ये। और नदीम भाई यूके आउट ऑफ कंट्री, जोया सुन रही हैं। अच्छा, अरे भाई
ये अब मुझे याद आया, आपने जोया को एक दफा ट्रैक भी डेडिकेट किया था, और जोया का पूरा नाम जो है वो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं भी आपको बताऊंगा मुझे, क्योंकि हमारी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है उनका नाम भी जोया था जब आपने इनको ट्रैक डेडिकेट करवाया था, जोया मार्थ मेरा ख्याल है इनका नाम था अगर मैं भूल नहीं रहा, तो जोया मार्थ को भी हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे जनाब वकीत की जानिब से, और जाएंगे ट्रैक की जानिब, लेकिन अभी हम एक मिली नगमे की जानिब जाएंगे, और इस मिली नगमे के बाद जो है वो हम जोया मार्थ को वकीत की जानिब से यूनाइटेड किंगडम वाली जनाब ये तो उनको ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे। पहला ट्रैक जनाब हम कौमी नगमा है जो कि हम हमारे प्यारे से छोटे भाई नवीद की जानिब से आप सबको डेडिकेट कर रहे हैं, और दूसरा ट्रैक जो है वो हम वकीत की जानिब से जोया मार्थ को डेडिकेट करेंगे। एलो फड़ो

0: वेलकम बैक कहेंगे भाई ब्यूटीफुल ट्रैक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ट्रैक पसंद आ रहे होंगे। अच्छा जनाब, मैंने सवाल आपसे ये किया था, उस सवाल की जानिब दोबारा आ जाते हैं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो ऐसा ना हो कि सवाल का जवाब बीच में ही रह जाए। बहुत ही आसान सा सवाल था और तकरीबन वैसे ही 90% से ज्यादा लोगों ने उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया था। और सवाल मैंने रिपीट करता हूं कि सवाल मैंने आपसे ये किया था कि मीनारे पाकिस्तान किस पार्क, जिस पार्क में मीनारे पाकिस्तान है उसका नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। तो ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिए, इकबाल पार्क और मंटो पार्क इसका जवाब दिया, तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप लोगों ने तफसील से भी जो बताया वो भी दुरुस्त बताया कि अभी हालिया जहां पर मीनारे पाकिस्तान मौजूद है उस पार्क का नाम जो है वो इकबाल पार्क है, लेकिन इकबाल पार्क का जो पुराना नाम था वो मंटो पार्क। बिल्कुल दुरुस्त, और बिल्कुल सारी 1940 और करार दादे पाकिस्तान ये और यादगारे पाकिस्तान, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 90% से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। और संजू के मैसेज आ गए हैं, कीमती मालूमात है जनाब, खामोशी से सुन रही हूं, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा। ना जी ना, ऐसा नहीं कि पानी पी लें, पी लिया जनाब। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और ये क्या नाम है भाई, हाँ नवाज गबोल सार उर्फ डॉन, उर्फ डॉन सलाम की बात कर रहे हैं कि एक डेडिकेशन पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से सॉन्ग चलाए हैं। भाई वही चल रहे हैं नवाब साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप, वही तो गाने ज्यादातर चल रहे हैं। फरहान भाई कह रहे हैं कि दिस सॉन्ग डेडिकेट टू माई वाइफ, बिल्कुल जी आपकी वाइफ को हम गाना जरूर डेडिकेट करेंगे। पाक चाइना नेपाल ये सिलसिला तीनों मुल्कों से मिलता है। अच्छा ये पहाड़ के पहाड़ी सिलसिले के हवाले से जो मैंने बात की थी ना वो। अच्छा कि नहीं आप आई समय से गलत ले गए, मेरा भांजा 9th में है, मुताला पाकिस्तान में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप बता रहे हैं। बेशक ऐसा है, मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त समझाऊं, लेकिन आपका वो जो मैसेज था, मैंने वो जिस तरह का मैसेज था मैंने उसी तरह लिया। मैं आपसे सभी नाराज नहीं हूं, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा, मैं ये, मेरे अंदर ये मादा है ही नहीं नाराज होने का। बिल्कुल हर इंसान को ये हक हासिल है उसकी अपनी राय का इजहार करे, आपने भी किया, और आपने जिस 9th क्लास के बच्चे का जो आपने कहा बिल्कुल ऐसा है। देखिए मैंने जैसे ये बात की है ना, ये भी काबिले गौर है, आप भी बात को गलत मत समझिएगा कि ये हमारा अलमिया है बहुत बड़ा, कि पढ़ तो लिया और बस वो पढ़ा है, याद नहीं रखा, जबकि ये चीजें याद रखने वाली नहीं है, बल्कि हमें हमारा फर्ज बनता है कि हमें पता हो कि हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क में क्या क्या अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। साहिबजादा साहब, नॉर्दर्न एरिया स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान नहीं गए आप, हमारा नॉर्दर्न एरिया स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है मेरी नजर में, या मेरी आंखों से देखें तो। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा जनाब, अब कौन रह गया है, हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर रह गई हैं। जरीन नूर की जानिब से हमने ट्रैक डेडिकेट करना है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो है वो सिलसिलाकार कुछ ऐसा हो कि हमारे जितने भी लिसनर हैं उनकी फरमाइशें बीच में रह जाए या मेरे जहन से निकल जाए, क्योंकि मैं जब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूं या उस चर्चा पर आ रहा होता हूं तो मैं उसमें खो जाता हूं, तो भूल भी जाता हूं, जिसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूं। खैर जी, एक ट्रैक जरीन नूर की जानिब से संजू के लिए और मेरी जानिब से रूह मन के लिए, एलो फड़ो।
1: You know how I've been thinking about our friendship and how weird it's been. So why don't you just say that you love me?